ध्यान दिया है आपने कि नदियां कभी अपना पानी वापस नहीं मांगती, पेड़ कभी अपनी छांव का या दिए गए फलों का हिसाब नहीं रखते, और धूप बिना ये देखे हर रोज लौट आती है कि कल किसने उसकी कद्र की थी या किसने कहा था कि बहुत तेज धूप है भाई, पूरा शरीर जला जा रहा है, नहीं सोचती वो इस बारे में। और शायद इसीलिए नेचर इतना सुंदर है क्योंकि उसे देना आता है लेना नहीं, अपने दी गई चीजों का ना वो हिसाब किताब नहीं रखता है। हम इंसानों की तरह अगर नेचर भी हो जाए तो फिर शायद ही इस नेचर की एक भी चीज हम में से किसी के हिस्से आ पाएगी। इट हैपन्स, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

अब धीरे धीरे जिंदगी बदल गई है, सर्कल छोटा हो गया है और फोन अब जरा कम बजता है। बस काम के ही मैसेज और फोन आते हैं, ना कोई हमारा हाल पूछना चाहता है, ना हम किसी का जानना चाहते हैं। अब वो वक्त है कि दोस्त उंगलियों पे गिने जा सकते हैं और उनसे भी कभी कभार ही बात हो पाती है। जी आपकी जिंदगी में भी ये फेज जरूर आया होगा, नहीं आया होगा तो यकीन मानिए बहुत जल्द आएगा, जब आप अपनी दुनिया को अपनों तक सीमित कर लेते हैं और दिखावे की दुनिया को बाय बाय बोल देते हैं। तो जिनकी जिंदगी में ये पीरियड आ चुका है उनके नाम ये अगला ट्रैक है। इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रसवाली पर।

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

सब कहते हैं कि वक्त के साथ साथ आदमी ज्यादा मजबूत हो जाता है और शायद हो भी जाता हो, पर मुझे लगता है कि हम मजबूत कम और चुप ज्यादा हो जाते हैं। हम सहना सीख जाते हैं। पहले जो बातें हम किसी को बता दिया करते थे, अब खुद से भी छुपाना सीख जाते हैं। पहले दर्द होता था तो दिख जाता था, अब दर्द भी जरा तमीज से रहता है। बस कभी कभी किसी पुरानी याद पे, किसी पुरानी फोटो पे या किसी गाने पे आंख भर आती है। आपके साथ भी होता है ऐसा? अगर होता है तो आपके नाम ये ट्रैक है, इसे सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 107.01 एम पर।

किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है और सोचा आप इस सुबह आपके साथ बांटूं कि जितना कम सामान रहेगा सफर उतना ही आसान रहेगा। हर चीज का बोझ उठाना जरूरी नहीं है। कुछ बोझ यादों का होता है, कुछ लोगों का होता है और कुछ खुद की अधूरी उम्मीदों का होता है। देखा जाए तो हम सब जिंदगी भर खुद की अलमारियां ही तो भरते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, बेवजह का डर, बेवजह के सपने, बेवजह की बातों से। और फिर किसी मोड़ पर जिंदगी धीरे से ये भी कहती है कि हर चीज साथ लेकर नहीं चला जाता। कुछ बोझ दिल से हटाने जरूरी होते हैं, आपके दिल की अलमारी से निकालने जरूरी होते हैं, तभी जिंदगी कुछ बेहतर हो पाती है, कुछ संभल पाती है और जब इस दुनिया से जाने का वक्त आता है तो वो सफर भी आसान हो जाता है। सुनते रहिए इट हैपेंस, रेडियो ब्रिस्वानी पर आपके साथ सताक्षी है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर और सुबह का मंत्रा गुरु मंत्र आज का सताक्षी का ये कहता है कि हमेशा खुद से अच्छी बातें किया करिए, हमेशा हमेशा हमेशा खुद के बारे में अच्छा सोचा करिए, हमेशा खुद को पॉजिटिव मोटिवेशन दिया करिए। वो दिमाग की जो हमारी चिटचैट होती है ना अपने साथ, उसको हमेशा पॉजिटिव रखा करिए, खुद से कहा करिए कि तुम ऑफकोर्स ये काम कर सकते हो, तुम ऑफकोर्स जिंदगी में खुश रह सकते हो। खुद के साथ पॉजिटिव रहना ये असली पॉजिटिविटी है। हमारे साथ जो हमारे दिमाग की चिटचैट होती है उसमें हम हमेशा खुद के साथ नेगेटिव टॉक करते हैं, और सेल्फ टॉक अगर नेगेटिव हो दोस्तों तो जिंदगी नेगेटिव ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाती है। आप सिर्फ मेरे कहने से एक हफ्ता खुद के साथ पॉजिटिव टॉक करके देखिए, सेल्फ टॉक जब आपकी हो रही हो तो उसे पॉजिटिव रख के देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है। सिर्फ एक हफ्ता करके देखिए और सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

फ्रेंड्स, ये था आज का इट हैपेंस का एक और साथ सताक्षी के साथ, एंड आई होप कि आज के साथ को भी आपने जरूर पसंद किया होगा, आपको मजा आया होगा, आप एंटरटेन हुए होंगे। तो कल कुछ गहरी बातों, प्यार भरे एहसासों और हमारे आपके जज्बातों के साथ फिर से होगी आपसे इसी सफर इट हैपेंस में एक और मुलाकात। आज के सफर से आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जी
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन वन एम ते जी आप जे संदेश औलक दे नाल सी बने होए हो। देखो बॉलीवुड दे चकाचौंध भरी दुनिया विच शोहरत कमाउण दे लई सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक दमदार नाम दा होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अक्षय कुमार कैटरीना कैफ सैफ अली खान वर्गे इंडियन सिनेमा दे कई वड्डे सितारियां ने परदे ते कदम रखण तो पहला अपना असली नाम बदल दिता सी। इन्हां नूं लग्या कि फिल्म इंडस्ट्री दे मिजाज अते दशकां नाल जुड़ाव दे हिसाब नाल उन्हां दे जन्म दे नाम उन्ने असरदार नहीं इसलिए उन्होंने खुद नू नवा स्क्रीन नेम दिता जिस नाल अगे चल के उन्होंने घर घर विच पहचान बनाई है कि बिल्कुल सही। भारतीय सिनेमा विच रजनीकांत अक्षय कुमार कैटरीना कैफ वर्गे कई अजिहे नाम हैगे ने जो कामयाबी दी सब तो वड्डी गारंटी हैगे ने। ए बिल्कुल सच गल हैगी है जी ते इन्हां ने नाम बदले हैगे ने ते अज ओह वड्डा नाम कमा रहे हैगे ने। किन्ना किन्ना दे असली नाम की हैगे ने शायद थानू नहीं पता होना पर कोई गल नहीं टेंशन नहीं लैणी मैं दस दी एक एक करके पर पहला सुनो एक गीत।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: ਤੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ।
1: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.9 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है इस लिस्ट विच जेड़ी मेरे कोल है कि उस विच है जी रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत का असली नाम की है बहुत नहीं पता होना, जिन्होंने नहीं पता मैं दस दिनी हाँ। असली नाम है रजनीकांत शिवाजी राव गायकवाड़। जद उन्होंने कर्नाटक की फिल्मी दुनिया विच कदम रखिया सी ना तो उन्होंने नाम बदल दिता गया। इंडस्ट्री विच उन्होंने गॉडफादर ते मशहूर डायरेक्टर के बालाचंदर ने उन्होंने रजनीकांत नाम दिता। ओ सिनेमा दे परते दे लई कदमदार ते यादगार नाम चाहते सी, इसलिए उन्होंने अपनी एक फिल्म के किरदार तो प्रेरित होके ये नाम चुनिया। इस नाम ने अगे चल के भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिता है।

जी आनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसौनी बनसन वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हुण गल आउंदी है जी ग्लैमर क्वीन दी ग्लैमर क्वीन कौन है तुसी समझ गए होंगे ओ है जी कैटरीना कैफ जी हां ग्लैमर क्वीन कैटरीना कैफ जो हुण एक मां बन चुकी है बहुत ही प्यारे जे बच्चे दी कैटरीना कैफ हैगी है जी विक्की कौशल दी वाइफ ते बहुत ही शानदार एक्ट्रेस तुहानू पता है कैटरीना कैफ का असली नाम की है नहीं पता मैं दसती नहीं आता कैटरीना कैफ का असली नाम है जी कैटरीना चारकाटी जद उन्होंने भारत आके अपनी मॉडलिंग ते एक्टिंग करियर की शुरुआत की ना तो उन्होंने अपना सरनेम बदल के मां का सरनेम कैफ अपनाया है ये बदलाव खास तौर पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री नूं ध्यान विच रख के किया गया है ताकि नाम थोड़ा सौखा हो जाए तो देश के आम दर्शक उन्होंने नाम नूं आसानी नाल बोल सकन ते लंबे समय तक याद भी रखा जा सके।

0: ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ।
1: ਹਨੀ ਇਹ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 1071 एम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए अगला जेड़ा नाम हैगा इस लिस्ट दे विच ओ ता हदल चहेता है क्योंकि उन्हां दा 2.5 किलो का हाथ कौन पुल सकता है जी हाँ नाम है जी सानी देओल दा अपने 2.5 किलो के हाथ दे मशहूर सानी देओल दा असली नाम अजय सिंह देओल है जद उन्होंने फिल्म विच डेब्यू किया तो मेकर्स अते उन्होंने मिलके स्क्रीन नेम सनी चुनिया उस दौर विच मन्या गया है कि यह नाम दर्शकों के विचकार ज्यादा कैची कूल अते फ्रेंडली लगेगा वक्त दे नाल यह नाम लोगों की जुबान ते इस कदर चढ़ गया कि अज फैंस तो दूर इंडस्ट्री विच भी शायद ही कोई उन्होंने उन्होंने असली नाम के नाल बुलाउंदा होवे

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

0: जी आयनु जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते वाले रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.9 ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है वह है जो बहुत ही खूबसूरत जी अदाकारा दा 90s दी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अदाकारा है ते अज भी एवरग्रीन है उन ही खूबसूरती बरकरार है। नाम है जी तपू। जी हाँ, अपनी बेहतरीन अदाकारी दे लई मशहूर एक्ट्रेस तपू दा नाम पहला कुछ होर सी, थोड़ा औखा सी, पर मैं तुहानूं दस दिंदी हां नाम सीगा जी तबसुम फातिमा हाशमी। जद उन्होंने फिल्मों विच एंट्री लई ना तां अपने इस वड्डे नाम नूं छोटा करके तबू रख लिया। उन्हां नूं लग्या कि वड्डे पर्दे दे लिहाज नाल इह नाम काफी क्रिस्प छोटा ते एक मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस वाला रहेगा। नाम बदलण दा इह फैसला फिल्म मेकर्स दे लई मार्केटिंग दे हिसाब नाल काफी सौखा रहा ते इस नाल उन्हां दी यूनिक पहचान भी बनी रही।
1: हाँ जी, मुड़ा सा दूंगा ना।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। ग्रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101.1 FM जी। आप जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम हैगा जी ओ सैंडसम हंगताज, बॉलीवुड दे विच कई सालां तो छाए हुए है कि ने, अज भी उसे तरीके दे नाल ने, ते फिटनेस दा तां उन्हां दी दा कोई तोड़ ही नहीं। नाम हैगा जी जॉन इब्राहिम। बॉलीवुड दे हैंडसम हंक जॉन इब्राहिम दा असली नाम पता नहीं पता तो मैं दस दिनी। जॉन इब्राहिम का असली नाम हैगा जी फरहान इब्राहिम। जी हाँ, मॉडलिंग के दिनों विच ते फिल्मों विच आउण तो ठीक पहला उन्होंने अपना फर्स्ट नेम बदलन का फैसला लिया। उन्होंने जॉन नाम चुनिया क्योंकि इस सुनने विच काफी सिंपल मॉडर्न ते इंटरनेशनल लगता है। नाम दे इस छोटे जे बदलाव नाल उन्होंने मॉडलिंग कैंपेन तो लेके बॉलीवुड फिल्मा तक हर जगह एक बेहद वखरा ते मजबूत पहचान दवाउण विच मदद मिली सी।

हाँ जी जी आयन जी, पर बेड़ा हो चुके हैं तो टाटा बाय बाय कहता जी आया फिर भी कह लिया क्योंकि एक नाम बहुत इंपोर्टेंट सी जिस बारे थानू दसना बेहद जरूरी सी। मैं सोचा जान तो पहला उन्होंने बारे थानू दस ही दिनी है तो वह नाम है चीफ रेखा जी। हाँ बॉलीवुड की आवर क्वीन ब्यूटी रेखा ता असल नाम रेखा नहीं सी, असल नाम सी जी भानु रेखा गणेशन। उन्होंने जब उन्होंने सिनेमा की दुनिया विच कदम रखिया ना तो उन्होंने अपना नाम छोटा करके सिर्फ रेखा रखना पिया। ये नाम ना सिर्फ बेहद सिंपल अते एलीगेंट सी बल्कि आम दर्शकों के लिए इसनू याद रखना भी काफी सौखा सी। अगे चल के सिर्फ एक नाम वाली अनोखी पहचान भारतीय सिनेमा के इतिहास विच सब तो आइकोनिक शख्सियतों विचों एक बार की हैगी है। इस गल दे नाल तां मेरे ख्याल सारे ही सहमत ने। बाकी थानू के कौन एक्टर है जिसका असली नाम ज्यादा वधिया लग्या हैगा है चेंज किते हुए नालों वो तुसी सानू जरूर दस्यो। रेडियो ब्रिसवानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जिहदे ब्रिसवानी@ब्रिसवानी.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा हो अपनाओ पर साडा गल्ल बात जरूर करते रहा करो है ना। तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो ते मैं हुणे वापस आउनी आ ना ना ना ना कल वापस आउनी आ करन दे लई ढेर सारियां गल्लां ते चलो फिर जाण वेले इक्को गल कहणी है कि रखो अपना ख्याल। सत श्री अकाल।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके ऐसी तोड़े को ला रहे हैं।
1: The Legend Harbhajan Mann live in Brisbane
2: Saturday 15th August 6:30 PM
0: मिलते हैं जी Brisbane बीच
2: at Brisbane Central Auditorium Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। इह सुनेहा क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani पे.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा

500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हैं। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हैं। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

न बदला में, न बदला

कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोच कर पिछला और अगला

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। और हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कैसा फील कर रहे हैं आज आप? आप अच्छा फील कर रहे हैं? नहीं फील कर रहे गलती से अगर अच्छा, तो आइए अब आपको अच्छा फील होने वाला है। और उसके बारे में हम काफी श्योरिटी से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम आपको एंटरटेन करना जानते हैं, हम आपको गाने भी बढ़िया सुनाना जानते हैं, हम सब वो तरकीबें जानते हैं जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल कर एकदम मजेदार वाली वाइब में लेकर जा सके। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। और प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक हेल्दी रिचुअल के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमें प्रोडक्टिव काम और एकदम स्ट्रेस फ्री रखने में हेल्प करता है और हमें बहुत ही शांत बनाता है। जी हाँ, मतलब कोई भी केओस हमारे दिमाग के अंदर एंटर नहीं हो पाता। और वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की एक बढ़िया से गाने के साथ। गाने का नाम है दिल का टेलीफोन। और अगर आपके भी दिल में टेलीफोन है तो उसमें मैं रिंग कर रही हूँ, जल्दी से उठाना बिल्कुल मत भूलिए। और ये रहा आपके लिए जबरदस्त सा गाना।

0: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया चलाते चलाते मुझे दिखता है एक मीम जहां पर एक बड़ी ही समझदारी और पते की बात लिखी हुई थी और वो हंसी वाली भी थी। तो मैंने सोचा कि मुझे मेरे लिसनर्स के साथ उसे बिल्कुल शेयर करना चाहिए। तो वहां पे लिखा हुआ था द टोमेटो, जी हाँ, द टोमेटो आई टुक ऑफ माई बर्गर वॉचिंग मी पुट केचप ऑन इट। जी हाँ, ध्यान से सुनिए अगर आपने नहीं सुना। द टोमेटो आई टुक ऑफ माई बर्गर वॉचिंग मी पुट केचप ऑन इट। अब बात तो सही है क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि अपने बर्गर में टमाटो पसंद नहीं करते, मतलब टमाटर की स्लाइस जो है वो पसंद नहीं करते। बड़े ही अच्छे से पहले बर्गर लेंगे और फटाफट से उसको खोलेंगे और उसमें से टमाटो को निकालेंगे, यानी कि टमाटर को निकालेंगे और फिर मजे से केचप जो है उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और फिर उसे खाएंगे। अरे भाई, बात तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब आप लोग बोलोगे जो कि टमाटर नहीं खाते हैं बर्गर में कि नहीं नहीं नहीं विवेक शर्मा, बात बिल्कुल सेम नहीं है क्योंकि दोनों का टेस्ट जो है वो बहुत ही अलग है। पर इट्स अ टमाटो केचप एंड वो टमाटो ही आपने अपने बर्गर में से बाहर निकाला है। सो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। तो उस मीम में ऐसा ही कुछ था कि सेंस नहीं बनती लेकिन फिर भी लोग सेंस बनाते हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने बर्गर में टमाटो डाल के खाना पसंद करते हैं या उसे निकाल के खाना पसंद करते हैं? बिकॉज़ आई नो सो मेनी पीपल जिनको टमाटर अपने बर्गर में पसंद नहीं है लेकिन केचप ऊपर से डालना पूरा का पूरा पसंद है। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इट। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: That's right. Pump it up.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार शेनिविया के साथ। दोस्तों, एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी के बारे में मैं अब आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है और थोड़ा इमोशनल भी फील करवा सकती है। जी हाँ, थोड़ा इमोशनल, ज्यादा नहीं। सो ये हार्ट वार्मिंग स्टोरी है जापान से। जी हाँ, जहां पर एक रिमोट ट्रेन स्टेशन है होकाइडो का जो कि खुला रहा। जी हाँ, एक ट्रेन स्टेशन जो कि पूरी तरह से बंद हो सकता था, वहां पे कोई भी ट्रेन नहीं आने वाली थी, वो खुला रहा और वहां पर एक ट्रेन हमेशा आती रही। आप लोग बोलोगे कि अच्छा, रिमोट एरिया था और उसे बंद करने की तैयारी थी और एक ट्रेन फिर भी आती रही, इसके पीछे रीजन क्या होगा? वेल, रीजन मैं आपको बताने वाली हूं एंड दैट इज द हार्ट वार्मिंग पार्ट। जी हाँ, सो होकाइडो का ये ट्रेन स्टेशन जो कि बिल्कुल रिमोट एरिया पे था, इसको ऑपरेशनल रखा गया सोलली फॉर अ सिंगल हाई स्कूल स्टूडेंट। जी हाँ, आप लोग बोले What are you talking about, Nivia? You know what? That's why Japan is so special and Japanese people are so special. Unke morals, unke etiquettes, unki soch jo hai, wo aapka heart warm kar degi. So basically, ek ladki jo ki usi Hokkaido station ke se train leti thi aur apne school jati thi, उस लड़की के लिए, सिर्फ उसी लड़की के लिए उस ट्रेन को चलते रखा गया। अदरवाइज उस ट्रेन स्टेशन को बंद किया जाना था, उस ट्रेन ने भी आना बंद करना था, बट स्पेशली फॉर दैट गर्ल ओनली, उस स्कूल गर्ल के लिए उस ट्रेन को चलते रखा गया, उस स्टेशन को चलते रखा गया। जी हाँ, उस स्टूडेंट का नाम था काना हरादा। जी हाँ, और जब उसकी ग्रेजुएशन हो गई, जिस दिन वो ग्रेजुएट हुई उसी दिन से वो ट्रेन आनी बंद हो गई। जी हाँ, मतलब उस ट्रेन को बंद करने का पहले ही इरादा जो है वो अथॉरिटीज कर चुकी थी और पूरी तरह से उसे बंद कर दिया जाना था, क्योंकि वहां पे कोई भी जो है वो नहीं आता था, कोई भी बच्चा जो है या जो ह्यूमन जो है वो वहां से उस ट्रेन को नहीं लेता था या किसी भी और ट्रेन को नहीं लेता था। लेकिन उस ट्रेन में सिर्फ एक लड़की को अपने स्कूल जाना होता था और इसी वजह से उस ट्रेन को चलता रखा गया। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि रेलवे कंपनी ने मेंटेन किया एक अंडर यूज स्टॉप फॉर एयर्स। जी हाँ, अंडर यूज स्टॉप मतलब वहां पे ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उस ट्रेन कंपनी ने उस ट्रेन को चलता रखा गया, एडजस्ट किया गया उसके शेड्यूल को ताकि वो रिलायबल राइड दे सके उस स्कूल गर्ल को, ताकि वो हर दिन अपने स्कूल जा सके और स्कूल से वापस आ सके। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि हाँ अब तो समझ आ रहा है कि क्यों ये स्टोरी इमोशनल कर सकती है और क्यों ये एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है। जैसे मैंने कहा कि ये कोई और कंट्री होती तो कोई भी ऐसा नहीं सोचता, मतलब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर लोग जो है वो ज्यादा कम्यूट नहीं करते हैं या फिर वो इतना यूज नहीं होती जगहें या ट्रेन या फिर कोई भी व्हीकल, सोशल व्हीकल, सो ऐसे में अथॉरिटीज हमेशा उसे बंद कर देती है, वो किसी भी एक इंसान के लिए उसको चलता नहीं रखेंगी। बट जापान डिड दैट, जापान में ऐसा हुआ है। जी हाँ, एंड आई नो, मतलब मैं जब इसके बारे में मैंने काफी टाइम पहले सुना था, बट मैं आपको काफी टाइम बाद सुना रही हूँ क्योंकि फिर से इसके बारे में किसी के साथ जिक्र हुआ और मुझे लगा मुझे आपको ये स्टोरी बिल्कुल सुनानी चाहिए। तो इमेजिन कीजिए कि एक ट्रेन कंपनी जो कि लिटरली लॉस फेस कर रही थी एक रूट से, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे चलता रखा, क्योंकि अगर वो उसे चलता नहीं रखते तो उस लड़की को वहां से पैदल वॉक करके कहीं और जाना पड़ता और वहां से उसे कोई पब्लिक व्हीकल जो है वो मिलता जो कि बहुत दूर हो जाता, उसे बहुत लंबा वॉक करना पड़ता, लेकिन उसे ना करना पड़े और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाए, इसीलिए उस ट्रेन कंपनी ने उस ट्रेन को जारी रखा। इमेजिन, आई मीन जापान इज सो क्यूट, मतलब जापान में अगर वो नेचुरल डिजास्टर्स खतरनाक ना होना तो जापान में जाकर रहना सच में बहुत खास बात होगी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्चे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताते हैं जो कि इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ वायरल हो रहा है तो आपको भी तो बताना चाहिए। रिया, सो अगर आप लोग लिटरली पॉप सिंगर ड्रेक के फैन हैं, द रैपर, द पॉप, द R&B सिंगर, मतलब क्या क्या मैं कहूं, जब वो एल्बम्स ड्रॉप करते हैं तो एप्पल, यूट्यूब और स्पॉटिफाई सब क्रैश हो जाता है। जी हाँ, सो ऑफकोर्स उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर बात यह है कि ड्रेक के पास एक नेकलेस है। जी हाँ, एक नेकलेस है ड्रेक के पास जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसके पीछे की कहानी। जी हाँ, सो ड्रेक के पास जो नेकलेस है उसकी कीमत है $13 मिलियन, मतलब $13 मिलियन का एक नेकलेस है ड्रेक के पास। आप लोग बोलो कि ठीक है, ही इज अ सुपरस्टार और कितना बड़ा जो है वो आर्टिस्ट है, सो ऑफकोर्स $13 मिलियन की ज्वेलरी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेल, वी आर गोना टॉक अबाउट कि क्यों ये खास है। जी हाँ, ये नेकलेस जो है वो हीरो से बना हुआ है। जी हाँ, इसकी कीमत है $13 मिलियन और इसमें 42 हीरे हैं, बहुत बड़े बड़े हीरे, 42 बहुत बड़े बड़े हीरे, और वो जो है मिलकर जो है ये नेकलेस बना है। और अब इसके पीछे का मतलब हम आपको बताते हैं, जिसको सुन के मैं इतना हंसी कि मैं लिटरली गिर गई अपने बेड से। एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं इतना हंसते हंसते गिर गई तो ऑफकोर्स मुझे अपने लिसनर्स को भी हंसते हंसते गिराना है। जी हाँ, सो ये 42 डायमंड्स का नेकलेस जिसकी कीमत जो है वो $13 मिलियन है, उसकी कहानी ये है कि ये ड्रेक ने हर उस वुमेन को डेडिकेट किया है जिनको वो प्रपोज करने वाले थे। मतलब 42 टाइम अपने जिंदगी में उन्हें ऐसा लगा है कि वो ना किसी को प्रपोज करने वाले हैं। मतलब ये जो लड़की उन्हें मिली है ये उनकी अर्धांगिनी बनने वाली है, ये उनकी जिंदगी भर की पार्टनर बनने वाली है, और उसके बाद जो है वो बनती नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट प्रपोजल की बात हो रही है। सो 42 हीरे एक नेकलेस में उन 42 लेडीज को रिप्रेजेंट करता है जिनको ड्रेक ने ऑलमोस्ट प्रपोज कर दिया था। ये वाला कि वाह, मतलब अच्छा तरीका है याद करने का उन फ्लिंग्स को जो कि लिटरली पूरे ही नहीं हुए। मतलब ऐसे जो है कहानियां जो अंजाम तक पहुंची ही नहीं, उनको याद करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एंड यू नो व्हाट, दैट इज द फनीएस्ट पार्ट। मतलब लिटरली 42 टाइम्स इस बंदे को लगा है कि ये, मतलब अब जो है ये लेडी जो है इसके साथ तो शादी करनी पड़ेगी, यही मेरी पत्नी बनने लायक है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगा ही नहीं, बताओ हद हो गई है। 42 टाइम्स, नॉट 1, 2, 3, 4, 42। As like, wow. तो $13 मिलियन का ये नेकलेस डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि ये दिखाता है कि कितनी बार प्यार हो जाता है और कितनी बार दिल फिसल जाता है ड्रेक का। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीवा के साथ। दोस्तों इसी के साथ हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब बात करते हैं ह्यूमन लाइफ स्पैन लिमिट के बारे में। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि हाँ ये तो इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। वेल ऑफकोर्स इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जितना वो जी पाते हैं नॉर्मली उससे ज्यादा जीने की ख्वाहिश रखते हैं, जो अमरत्व चाहते हैं, जो इमोर्टैलिटी चाहते हैं। नाउ इमोर्टैलिटी तो हमें नहीं मिलेगी क्योंकि वी आर नॉट गॉड्स और एनीथिंग, बट थिंग इज कि यहां पर कैसे साइंटिफिकली तरीकों से अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाया जाए इसके बारे में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। फिर चाहे हम बात करें ब्रायन जॉनसन के बारे में, जो कि लिटरली इस मामले में सबसे आगे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं ज्यादा लंबा जीने के लिए, विच आई एम गोना टॉक अबाउट लेटर। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने कह दिया है कि अल्टीमेट लिमिट जो है वो ह्यूमन लाइफ स्पैन की इट हैज टू बी, इट मे बी 146 to 194 ईयर्स। आप लोग बोलोगे कि है क्या हम ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं, हम कछुओं की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्या हम कछुओं के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि 200 साल 150 साल तो कछुए जीते हैं, इंसान तो हमने जीते हुए इतने देखे नहीं। सो यही वाली सिचुएशन है। एक नई स्टडी है जो सजेस्ट करती है कि देयर मे बी अ बायोलॉजिकल लिमिट टू हाउ लॉन्ग ह्यूमंस कैन लिव इवन इफ फ्यूचर मेडिसिन मैनेजेस टू स्लो आर रिवर्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। जी हाँ, सो बेसिकली मतलब अगर हम बहुत सारी चीजें चेंज कर देते हैं आगे जाकर, मतलब अगर हम साइंटिफिकली बहुत आगे चले जाते हैं और साइंस की दुनिया में इतना आगे जाते हैं कि उसके बाद हम अपनी एज लिमिट को बहुत ज्यादा लंबा कर ले, तो भी हमारी लिमिट जो है वो 146 या 194 ईयर्स के बीच में ही रह सकती है। जी हाँ, सो रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया है कि मैक्सिमम ह्यूमन लाइफ स्पैन कुड बी अराउंड 146 एंड 194 ईयर्स विद इरिवर्सिबल डीएनए म्यूटेशन इन द हार्ट एंड ब्रेन रिमेनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू लिविंग लॉन्गर। सो ऑफकोर्स मतलब कि पहले ऐसा कुछ होता था, मतलब वाइकिंग्स की अगर बात करें तो वाइकिंग्स जो हैं वो बहुत लंबा जीते थे ऐसा कहा जाता है, और भी कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि बहुत लंबी लंबी जो है वो जीती थी। आज भी अगर जापान के आप बहुत सारे लोगों को देखोगे तो वो बहुत लंबी उम्र में काफी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि देयर वॉज अ टाइम जब हम लंबा जिया करते थे, लेकिन उसकी भी एक हद है। जी हाँ, अब ये हद की बात ही यहां पर रिसर्चर्स ने की है उनका कहना है कि अगर जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, मतलब हम साइंस का साथ जो है वो ले रहे हैं और बहुत सारी और चीजों का साथ ले रहे हैं जिससे कि हम ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एज को, लाइफ स्पैन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम हम 146 to 194 ईयर्स तक ही जी सकते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट और ब्रेन जो है उसका डीएनए म्यूटेशन करना इरिवर्सिबल डीएनए म्यूटेशन करना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है हार्ट और ब्रेन का, और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है लंबा जीने के मामले में। जी हाँ, और ये पब्लिश हुआ है जनरल एनपीजी एजिंग में, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि सम फॉर्म्स ऑफ एज रिलेटेड डैमेज मे बी इम्पॉसिबल टू फुली ओवरकम विद करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि हम बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर भी लें, बहुत ज्यादा मतलब आगे का लीग से हटकर कर भी लें, तो भी मतलब जो इरिवर्सिबल डीएनए डैमेज है जो कि हमारा बेसिकली हार्ट और ब्रेन का होता है, उसको ओवरकम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताइएगा, और क्या आप भी 150 से ऑलमोस्ट 200 साल जीना पसंद करेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि जो जिंदगी अभी मिली हुई है वही काटना मुश्किल हो जा रहा है? कौन सी वाली कैटेगरी में है आप हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
4: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
5: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे शोज के बारे में जो अगर आप फैंटेसी जॉनर को बहुत पसंद करते हो तो आपके लिए है। जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबली शायद आपने उनको देखा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि ये शोज के बारे में आज भी बात होती है। सबसे पहले ऑफकोर्स इट हैज टू बी द हाउस ऑफ ड्रैगन्स। जी हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको देखने की जरूरत है। मतलब ऑफकोर्स दैट शो यू कांट वॉच इट विद योर फैमिली, यू कांट वॉच इट विद योर फैमिली, नॉट द हाउस ऑफ ड्रैगन, नॉट द गेम ऑफ थ्रोन्स। बट अगर आप वैसे बात करें कि इज इट इट हैज अ अडल्ट कॉन्टेंट, बट द थिंग इज कि ये शोज जो हैं उस कंटेंट के बजाय भी एज अ स्टोरी टेलिंग वाइज बहुत ही बढ़िया शोज हैं। जी हाँ, सो ऑफ कोर्स यू कैन वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स, यू कैन वॉच हाउस ऑफ ड्रैगन। जी हाँ, दूसरा शो जो कि मैं आपको बताने वाली हूं, जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है, और वो है ऑफ कोर्स स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स आप इजिली देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, और अगर आपको गॉथिक शोज पसंद है, सुपर नेचुरल पसंद है, फैंटेसी जॉनर पसंद है, देन दिस शो इज रियली फॉर यू। मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स की एक ऐसी ओरिजिनल सीरीज है जिसने नेटफ्लिक्स को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बना दिया था इन इट्स अर्लियर डेज, इनिशियल डेज। सो यू कैन इमेजिन कि आप कैसे कर सकते हो। इसी के साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अगर आप फैन हो तो मैं आपको मूवीज देखने के लिए नहीं कहूंगी। वेल ऑफ कोर्स अगर आपने मूवी भी नहीं देखी है तो मूवी जरूर देखिए, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आपको बताती है कि कैसे 1997, 1998 और 1999 में भी कोई इतना अच्छा VFX कर सकता है, इतनी बढ़िया मूवीज बना सकता है। और ऐसे ही नहीं, उस मूवी ने सारे के सारे ऑस्कर्स जीत लिए थे। लेकिन इसका एक और वर्जन जो कि प्राइम पर मौजूद है, विच इज अ रिंग ऑफ फायर, आप इसे देख सकते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर ही ये बेस्ड है बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सो यू आर गोना एंजॉय इट फॉर श्योर अगर आपने ये नहीं देखा है। जी हाँ, इसके अलावा मैं आपको विचर रेकमेंड करने वाली थी, लेकिन विचर जो है वो अपने आखिरी के दिनों में काफी ज्यादा नीचे को चला गया था। मतलब विचर जब हेनरी कैविल के साथ था तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, मतलब हेनरी कैविल और विचर हमने एक साथ ही जो है वो इन दोनों को मान लिया था, लेकिन उसके बाद जो है वो ये शो नीचे को चला गया क्योंकि हेनरी कैविल की जगह लियम हेम्सवर्थ को लाया गया, और जो कि गड़बड़ करने वाला काम था। जी हाँ, और इसी के साथ शेडो एंड बोन्स भी आप देख सकते हैं। अगेन इट्स नॉट अ हिस्ट्री शो, इट्स अ ऑफ कोर्स सुपरनैचुरल गॉथिक फैंटेसी काइंड ऑफ शो जो कि आप काफी पसंद करोगे, एंड ये भी नेटफ्लिक्स पे आपको मिलने वाला है। सो ये कुछ शोज है जो आप देख सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसी लगी ये लिस्ट, बिकॉज ऐसे लिस्ट हम आपको बार बार देते रहा करेंगे। ये शोज आप बिंज वॉच कर सकते हो और मजे से आप मुझे बता सकते हो कि आप इसे कितना एंजॉय कर पाए। वेल ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे शोज ऐसे हैं जो कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, खासकर हाउस ऑफ ड्रैगन एंड नाइट ऑफ द सेवन किंगडम एंड ऑफ कोर्स गेम ऑफ थ्रोन्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर इन्हें अकेले में देख लेते हो या फिर अपने अडल्ट दोस्तों के साथ देख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कांट वॉच इट विद योर किड्स। अदरवाइज बाकी सब बढ़िया शोज हैं, आप देखिए और मुझे बताइए आपको कैसे लगे। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, एक चीज मैं कल सोशल मीडिया चला रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा वहां पे एक मीम आता है और उसमें लिखा होता है, अगेन मैं कहती हूँ ना, जो सारी क्रिएटिविटी है जेंजी लोगों की वो मीम्स में जा रही है. सो आई हैव टू से म्यूजियम्स में क्रिएटिविटी नहीं है, सोशल मीडिया पर है. जरूर स्क्रॉल कीजिए और कुछ अच्छे पेजेस को ज्वाइन कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी एक्साइटमेंट से जो है और एंटरटेनमेंट से भर जाती है. तो उस मीम में लिखा हुआ था, व्हेन यू थॉट द आर्ग्यूमेंट वाज ओवर बट देन योर सिस्टम मंबल्स समथिंग quietly at the end and you know round 2 is about to start. जी अगर आपने नहीं सुना ध्यान से फिर से सुनिए. When you thought the argument was over but then your sister mumbled something quietly at the end and you know round 2 is about to start. Well, ये मेरे साथ होता है. Well, I don't have a sister but I have a brother and that's what happens between us. जब भी हम लड़ रहे होते हैं और हमें लगता है कि एकदम से हमारी लड़ाई जो है बस अब खत्म होने वाली है, लेकिन हम दोनों में से कोई एंड में फिर से कुछ ऐसे करके धीरे से बोल देता है और हमें लगता है सामने वाले को कि ओह हाउ डेयर यू, ये बोला कैसे तुमने, फिर से राउंड टू जो है वो शुरू हो जाता है. आप मुझे बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है, जब भी आपके साथ किसी के साथ बहस हो रही होती है और खासकर आपके सिबलिंग्स के साथ बहस हो रही होती है या थोड़ी चिटपिट फाइट हो रही होती है और आप एक दूसरे से एकदम तंच जो है एक दूसरे पर कस रहे होते हो और एकदम से आपको लगता है कि नहीं चलो ठीक है अब खत्म होने वाली है, लेकिन सामने वाला फिर से थोड़ी सी धीरे से थोड़ी सी लोअर टोन में कुछ बोलता है, लेकिन वो कर तो शिकायत ही रहा होता है वहां पर भी, और फिर आपको लगता है कि ओ रियली आई थॉट द फाइट वॉज ओवर बट इट वॉजंट. हाँ चलो ठीक है आ जाओ राउंड टू. जी हाँ, ये अपने भाई बहनों के साथ ही सबसे ज्यादा होता है. आई हैव टू अग्री. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या आप भी ऐसा करते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है तो जरूर मुझे बताइएगा. इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो शायद आपके स्कूल वालों ने आपको गलत बताई थी। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, बट हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अलावा भी बहुत कुछ है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो कि होती है, लेकिन जिसके बारे में हमें किसी ने नहीं बताया। हमें साइंस क्लास में ये बताया गया था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, और उस सन के आजू बाजू सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, और अपना वो एक चक्कर जो है वो 365 डेज में कंप्लीट करते हैं। जैसे अर्थ 365 डेज में अपने एक चक्कर को कंप्लीट करती है, जो कि वो सन के इर्द गिर्द लगाती है। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि सन भी क्या कुछ करता है। मतलब हमें ऐसा लगता था कि सन जो है वो वहीं पर है जहां पर वो हमेशा से है। मतलब वो एक जगह लटका हुआ है, एक जगह खड़ा है स्पेस में, और उसके आजू बाजू जो है वो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। अपेरेंटली हमारा सन, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है, हमारे मिल्की वे में है, वो भी किसी चीज का चक्कर लगाता है। आप लोग बोलोगे कि एलो, ये तो हमें पहले ही पता था कि हर कोई किसी ना किसी के इर्द गिर्द तो चक्कर काट रहा है, फिर सन कैसे पीछे रह सकता है। सो हमारा सन जो है वो हमारी ही गैलेक्सी के एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो सन जो है वो अपना चक्कर बहुत मिलियन सालों में जो है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद जो है वो अगले चक्कर के ऊपर जो है वो पहुंच जाता है, फिर वो अगला चक्कर जो है वो शुरू करता है। अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। वेल दैट्स व्हाट यू डोंट नो अबाउट, ये सब ऐसा ही नहीं चलेगा। सो अभी तक जब से सन जो है वो यू नो एग्जिस्टेंस में आया है, हमारा सोलर सिस्टम जब से एग्जिस्टेंस में आया है, तब से सन ने अभी तक काफी बार जो है वो चक्कर काट लिया है। लेकिन उसके अलावा 20 और चक्कर ही उसके पास बाकी बचे हैं। मतलब 20 और चक्कर के बाद क्या होगा, गेस कर सकते हो आप? सोचिए सोचिए, मतलब सन जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से वो हमारे जो हमारे गैलेक्सी का जो मिल्की वे है, मिल्की वे नहीं है, हमारे गैलेक्सी का जो ब्लैक होल है उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, और हमारा जो है सन जो है वो ट्रैवल भी कर रहा है धीरे धीरे। जी हाँ, मतलब वो आगे की ओर जा रहा है। नोबडी न्यू दैट, मतलब एटलीस्ट आई डिडंट नो दैट, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं है बताया। मुझे ऐसा लगता था कि सन जो है वो एक जगह पर है और बाकी के सारे प्लैनेट्स जो है वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये सूरज जो है वो अभी तक कितने चक्कर काट चुका है और फिर और कितने चक्कर इसके पास बाकी बचे हैं उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने के लिए, और फिर उसके बाद क्या होगा हमारे सोलर सिस्टम के साथ। आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो पहले हम आपको सुनाएंगे एक और जबरदस्त सा गाना।
9: Go home. I experienced it too. I

जी दोस्तों, तो मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जिसके में बारे में बेसिकली मुझे स्कूल में किसी ने नहीं बताया, बल्कि हमें स्कूल में कुछ और बताया गया, लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे की कहानी जो है वो क्या है, विच आई एम गोना टेल यू अबाउट. सो हमारा सोलर सिस्टम है और हमारा सन है, हमारे पास प्लैनेट्स हैं. सन के इर्द गिर्द जो है हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं, 8 प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. और हमें ऐसा लगता था हमेशा से, जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज एक जगह पर रहता है, हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं. बट जो हमें नहीं पता था वो ये था कि हमारा सन जो है वो भी किसी चीज के आगे रिवॉल्व करता है, अराउंड रिवॉल्व करता है. और हमारा सन जो है वो रिवॉल्व करता करता बाकी सारे प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाते करवाता मिल्की वे में आगे की ओर जा रहा है. लेकिन जिस चीज को हमारा सन रिवॉल्व करता है वो अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज अ सजिटेरियस ए. इट्स अ मैसिव सुपरनोवा ब्लैक होल. जी हाँ, अब आप लोगों को नहीं पता है ब्लैक होल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल वही एक पिट है जो कि सारे के सारे सितारों को, सारे के सारे प्लैनेट्स को इवेंचुअली निगल जाती है. उसके बाद क्या होता है नोबडी नोज, बट वो निगलती जरूर है. नाउ ये स्वॉलो तो कर ही लेती है, लेकिन यहां पर हमारा जो सन है वो कितने टाइम में अपना ये एक जो रिवॉल्व करने का जो राउंड है वो कितने टाइम में पूरा करता है, वो करता है 250 मिलियन साल में. मतलब अगर ह्यूमन एयर्स की बात करें तो 250 मिलियन एयर्स जो है, यानी कि 250 मिलियन एयर्स जो है, वो सन को लगते हैं एक राउंड को कंप्लीट करने में. अब ये पहले ही 20 राउंड जो है कि वो कंप्लीट कर चुका है जब से ये एग्जिस्टेंस में आया है, और अब इसके पास 22 और राउंड्स जो हैं वो बचे हुए हैं. जब ये अपने 22 राउंड्स को, जो और बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट कर लेगा उस सेजिटेरियस ए जो कि सुपरनोवा ब्लैक होल है, उसके इर्द गिर्द घूमने के वो जो राउंड्स हैं उनको कंप्लीट कर लेगा, जो और 22 बचे हैं, उसके बाद हमारा सन जो है वो खुद ही सारी चीजों को निगल जाएगा. या आपने सही सुना, एवरीथिंग इन आर सोलर सिस्टम वो गल्प डाउन कर जाएगा उस सारी चीजों को. जी हाँ, पर ऑफकोर्स उसे होने में बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि एक राउंड को लगते हैं 250 मिलियन साल, यानी कि 250 मिलियन एयर्स. तो अभी हमारे पास 22 जो है वो बचे हुए हैं वैसे ही, एंड 22 × 250 मिलियन एयर्स को आप इंटू कर लोगे तो आपके पास आ जाएगी फिगर कि कितने सारे साल, कितने मिलियन एयर्स जो है वो हमारे पास पड़े हुए हैं. बट या इट इज वॉट इट इज, एंड एक टाइम पे ये सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत आगे की बात है. बट या दैट्स द ट्रूथ ऑफ आर सोलर सिस्टम विच एग्जैक्टली नोबडी टोल्ड अस अबाउट. जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM. हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003। घर

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन व क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे।

एथलीट वीजे शामिल हैं जो कि अगे चल के रिहायश लिए वरती जाएगी। असी तुहाडे लिए होर की मुहैया करवा रहे हैं, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: लगन है।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स प्रिसिंक्ट की पहली झलक जारी। जी हां, 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए क्वींसलैंड सरकार ने एक स्टेडियम्स और ओलंपिक प्रिसिंक्ट की कॉन्सेप्ट इमेजेस जारी कर दी हैं। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के हाउसिंग मार्केट में नरमी। जी हां, सिडनी और मेलबर्न के साथ साथ ब्रिस्बेन में भी हाउसिंग मार्केट थोड़ा शांत हुआ है। नए डाटा के मुताबिक होम प्राइसेस और रेट ग्रोथ दर में हल्का ठहराव देखा जा रहा है। वहीं सेंसस 2026 अवेयरनेस ड्राइव शुरू। ऑस्ट्रेलिया में 2026 की जनगणना को लेकर पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव शुरू कर दी गई है। सरकार ने नागरिकों को आगाह किया है कि सेंसस के नाम पर होने वाले ऑनलाइन स्कैम और फेक मैसेज से सावधान रहें। इसी के साथ ब्रिस्बेन में शेयर हाउस और रेंटल कॉस्ट पर चर्चा। जी हां, ब्रिस्बेन में बढ़ रहे रेंटल कॉस्ट और शेयर हाउसिंग ट्रेंड को लेकर स्थानीय प्रशासन और युवाओं के बीच चर्चा तेज है। बजट फ्रेंडली एकोमोडेशन को बढ़ावा देने के लिए नए रूल्स पर काम चल रहा है। इसी के साथ नॉर्दर्न टेरिटरी में गर्मा फेस्टिवल 2026 का आगाज। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में मशहूर गर्मा फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इसमें इंडिजिनस डांस, आर्ट और कल्चरल स्टोरीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं समंदर में हम बैक वेल के जन्म का दुर्लभ वीडियो दर्ज। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई तट के पास एक ड्रोन कैमरे ने हम बैक वेल के बच्चे के जन्म का एक दुर्लभ और अद्भुत पल कैद किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने झंडे गाड़ दिए हैं। भारत ने कुल 39 मेडल जीते हैं, जिनमें 13 गोल्ड शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर सभी मेडल विजेताओं को बधाई दी। वहीं कावेरी नदी पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। जी हां, तमिलनाडु के कावेरी नदी तट पर किसानों ने अनोखा प्रदर्शन शुरू किया है। कर्नाटक से पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों ने रेत में दबकर सैंड बुरियल प्रोटेस्ट किया। इसी के साथ पेंडिंग ड्रग केसेस निपटाने के लिए नए कोर्ट्स। जी हां, देशभर की अदालतों में पेंडिंग पड़े करीब 3.9 लाख ड्रग से जुड़े मामलों को जल्दी निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसी के साथ तीन राज्यों की विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की खाली पड़ी विधानसभा सीटों के उपचुनावों के नतीजे आज आ गए हैं। सुबह से ही वोटों की गिनती जारी है। वहीं ड्रग फ्री यूथ कैंपेन की शुरुआत। देश के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार ने एक नया नेशनल कैंपेन ड्रग फ्री यूथ लॉन्च किया है। इसका मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अवेयरनेस बढ़ाना और युवाओं को स्पोर्ट्स या स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना है। इसी के साथ अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले इंडोनेशिया में फेरी हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंडोनेशिया के समंदर में एक बड़ी पैसेंजर फेरी में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 225 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इसके साथ ब्राड पीक पर पर्वतारोही निर्मल पूर्जा का निधन। जी हां, दिग्गज पर्वतारोही निर्मल पूर्जा का शव ब्राड पीक के पास मिला। भारी बर्फबारी और एवलांच की वजह से यह हादसा हुआ। इसी के साथ अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत फिर शुरू। वैश्विक शांति और मिडल ईस्ट में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर शुरू होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उम्मीद है कि इस मीटिंग से व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर सकारात्मक रास्ते निकलेंगे। वहीं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में आग, अंतर्राष्ट्रीय मदद जारी। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों में इस समय भीषण वाइल्ड फायर फैली हुई है। आग पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपनी स्पेशल इमरजेंसी टीमों और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को प्रभावित इलाकों में भेजा है। वहीं द सोप्रानोज फेम एक्टर विंसेंट पास्टोर का निधन। जी हाँ, मशहूर हॉलीवुड टीवी शो द सोप्रानोज में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता विंसेंट पास्टोर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसी के साथ डिजिटल सेंसस 2026 की तैयारियां तेज। दुनिया के कई देश 2026 के अपने राष्ट्रीय जनगणना अभियानों की तैयारी कर रहे हैं। इस बार डाटा कलेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा डिजिटल तारीखों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग में भारत की सोना की बरसात। जी हां, ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों ने रिंग में अपना दबदबा दिखाया। साक्षी चौधरी, जैस्मीन लंबोरिया, सचिन सिवाच और अंकुश पांगल जैसे स्टार बॉक्सर्स ने अपने अपने कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। जी हां, भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं पैरा एथलेटिक्स में सोमपाल और शुभम का जलवा। पैरा शॉर्ट पुट इवेंट में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। सोमन राणा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि शुभम जुयाल ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीमों की तैयारियां तेज। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबलों से पहले दुनिया भर की टॉप फुटबॉल टीमें अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। कई बड़े देशों ने अपने फ्रेंडली मैचेस और प्रैक्टिस कैंपस का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। इसी के साथ टूर डी फ्रांस 2026 के फाइनल स्टेज रोमांचक। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर डी फ्रांस 2026 के फाइनल दौर में राइडर्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
5: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
7: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी।

0: वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Digicel, better together.
4: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: अनु।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन. au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हुण अपने ट्वीट विच कोर्ट दे इस फैसले खिलाफ अपील करन ते लड़ाई जारी रखण दी गल कही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते कीते इक ट्वीट विच विनेश फोगाट ने कहा है कि सानू सड़कां ते उतरन ते सत्ताधारी पार्टी दे इक बाहुबली नेता खिलाफ FIR दर्ज करवाउण लई बहुत हिम्मत जतानी पई सी। सत्ता अते अपने बाहुबल दे दम ते ब्रिजभूषण ने कई कुड़ियां नूं डरा के उन्हां दे नां वापस करवाए सन, पर कई महिला पहलवान डटियां रहियां अते कोर्ट विच ब्रिजभूषण खिलाफ लड़ाई लड़दियां रहियां। विनेश ने अगे कहा है कि सानू इस गल दा बहुत दुख है कि अदालत ने ब्रिजभूषण शरण सिंह नूं महिला पहलवाना वलों लाए गए हिंसा दे दोषां विच दोषी नहीं मन्निया। शुरू दिन तों ही सारा तंत्र सरकार ते इस सिस्टम ब्रिजभूषण नूं बचाउण विच लग्या होया सी। महिला पहलवाना ने अपने वकीलां नूं इस फैसले खिलाफ अपील करन दे निर्देश दे दित्ते हन ते जल्दी तों जल्दी कीती जावेगी। असीं उम्मीद नहीं छड्डी अते महिला पहलवान नाल लड़ाई जारी रखणगे। उधर क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब तो सामने आया एक अजिहा मामला जिसने लोगों को हैरान करके रख दिता है। साल 1924 जन्मी हेडविगा गोइक नूं गुआंढियां ने आखिरी बार 1960 विच देखा सी, जिस तों बाद अचानक नजर आना बंद हो गई सी। आस पास रहने वाले लोगों ने मान लिया सी कि वह शहर छड़ के किते होर चली गई है। इस वजह करके किसी ने उसके फ्लैट का दरवाजा खड़काने या उसकी जानकारी लैण की कोशिश नहीं की। कई दहाकों बाद साल 2008 विच जायदाद नाल जुड़े एक कानूनी विवाद दौरान पुलिस अते अदालती अधिकारियां ने फ्लैट का ताला तोड़ के अंदर प्रवेश किया। कमरे दे अंदर का दृश्य देख सब हैरान रह गए। पूरा कमरा जिवें समय नाल थम गया सी। सब तो हैरान करन वाली गल ए सी कि हेडविगा गोलिक दी देह कुर्सी ते कंबलां विच लपेटी होई सी। उस दे कोल चाह दा इक कप रख्या सी अते सामने टीवी मौजूद सी। जांच विच पता लग्या है कि हेडविगा गोलिक दी मौत टीवी देखते अते चाह पींदे समय हो गई सी, जिस तों बाद उसका फ्लैट सालां तक बंद रहा ते किसे नूं इसकी कोई जानकारी नहीं सी। मीडिया ते यह मामला सामने आने तो बाद लोकां ने इस नूं इकल्लापन अते समाजिक दूरी दी दर्दनाक मिसाल दस्या है। गुआंढियां ने भी स्वीकार कीता से कि उन्हां ने यह मान लिया सी कि वह किते होर चली गई है, इसलिए कदे उस नाल संपर्क करन दी कोशिश नहीं कीती। उधर दूजे पासे ईरान ने अपने दो नागरिकां नूं जासूसी अते इजराइल नाल सहयोग दे दोषां विच फांसी दित्ती। ए विकास राष्ट्रीय सुरक्षा संबंध अपराध विच फांसी दी वधदी गिणती दे विचकार होया है। न्यायपालिका दी एक रिपोर्ट अनुसार मिजान उमेद बहजाद अते पोर्शिया सरफत ते हाल ही विच संघर्ष दौरान इजराइल नूं फौजी अते सुरक्षा स्थापनावां संबंधी कोआर्डिनेट फोटोआं ते जानकारी संचारित करन दा दोष लगाया गया सी। इह फांसी उस समय दित्ती गई जदों ईरान ने जनवरी विच हजार प्रदर्शनकारियां नूं मार के देशव्यापी अशांति नूं दबा दित्ता सी, जिस तों तुरंत बाद 28 फरवरी नूं अमरीका ते इजराइल द्वारा इस दे विरुद्ध नवे हमले शुरू कीते गए। हुण तक दी हम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी तो सुझाव देण दे लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आई डी है biswani@biswani.com। इस दे नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो biswani 1701। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लेकर। तकली दे विच सत श्री अकाल।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। Authorized by the Queensland Government, Brisbane. नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। A place to call home, खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। Authorized by the Queensland Government, Brisbane. वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। A place to call home, खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रथम भजन। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
4: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
5: सैटरडे 15th ऑगस्ट 6:30 PM
3: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन विच
5: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। Tickets at Premier Tickets.
6: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra. It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वनसन वन एम ते जी आज संदेश अलग दिन बने हुए हो। देखो बॉलीवुड दी चकाचौंध पर दुनिया विच शोहरत कमाउण दे लई सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक दमदार नाम दा होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अक्षय कुमार कैटरीना कैफ सैफ अली खान वर्गे इंडियन सिनेमा दे कई वड्डे सितारियां ने परदे ते कदम रखण तो पहला अपना असली नाम बदल दिता सी। इन्हां नूं लग्या कि फिल्म इंडस्ट्री दे मिजाज अते दशकां नाल जुड़ाव दे हिसाब नाल उन्हां दे जन्म दे नाम उन्ने असरदार नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद नू नवा स्क्रीन नेम दिता जिस नाल अगे चल के उन्होंने घर घर विच पहचान बनाई है कि बिल्कुल सही। भारतीय सिनेमा विच रजनीकांत अक्षय कुमार कैटरीना कैफ वर्गे कई अजिहे नाम हैगे ने जो कामयाबी दी सब तो वड्डी गारंटी हैगे ने। ए बिल्कुल सच गल हैगी है जी ते इन्होंने नाम बदले हैगे ने ते अज ओह वड्डा नाम कमा रहे हैगे ने। किन्ना किन्ना दे असली नाम की हैगे ने शायद थानू नहीं पता होना, पर कोई गल नहीं टेंशन नहीं लैनी। मैं दस दी एक एक करके, पर पहला सुनो एक गीत।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.9 एम ते जी आर जे संदेश अलग दे नाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम हैगा इस लिस्ट विच जेड़ी मेरे कोल हैगी है उस दे विच है जी रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत का असली नाम की है बहुत नूं नहीं पता होना, जिन्हां नूं नहीं पता मैं दस दिंदी हां, असली नाम है रजनीकांत दास शिवाजी राव गायकवाड़। जद उन्होंने कर्नाटक की फिल्मी दुनिया विच कदम रखिया सी ना तां उन्हां दा नाम बदल दिता गया। इंडस्ट्री विच उन्हां दे गॉडफादर ते मशहूर डायरेक्टर के बालाचंदर ने उन्हां नूं रजनीकांत नाम दिता। ओ सिनेमा दे परते दे लई कदमदार ते यादगार नाम चाहुंदे सी, इसलिए उन्होंने अपनी एक फिल्म दे किरदार तों प्रेरित होके इह नाम चुनिया। इस नाम ने अगे चल के भारतीय सिनेमा दा इतिहास बदल दिता है।

जी एनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी वंसन वन एम ते जी आज संदेश अलग दिन बने हुए हूँ गल आती है जी ग्लैमर क्वीन की ग्लैमर क्वीन कौन है तुसी समझ गए हो कि वह है जी कैटरीना कैफ जी हाँ ग्लैमर क्वीन कैटरीना कैफ जो हूँ एक माँ बन चुकी है बहुत ही प्यारे जे बच्चे की कैटरीना कैफ हैगी है जी विक्की कौशल की वाइफ तो बहुत ही शानदार एक्ट्रेस तुहानू पता है कैटरीना कैफ का असली नाम की है नहीं पता मैं दस दी रही कैटरीना कैफ का असली नाम है जी कैटरीना चारकाटी जद उन्होंने भारत आके अपनी मॉडलिंग ते एक्टिंग करियर की शुरुआत की ना तो उन्होंने अपना सरनेम बदल के मां का सरनेम कैफ अपनाया है। यह बदलाव खास तौर पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री नूं ध्यान विच रख के किया गया है ताकि नाम थोड़ा सौखा हो जाए तो देश के आम दर्शक उन्होंने नाम नूं आसानी नाल बोल सकन ते लंबे समय तक याद भी रख्या जा सके।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से।
3: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ

0: और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 1.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। अगला जेड़ा नाम हैगा इस लिस्ट विच ओ ता हदल चहेता है क्योंकि उन्हां दा 2.5 किलो का हाथ कौन भुल सकता है। जी हाँ, नाम है जी सानी देओल दा। अपने 2.5 किलो के हाथ दे लई मशहूर सानी देओल दा असली नाम अजय सिंह देओल है। जद उन्होंने फिल्म विच डेब्यू किया तो मेकर्स अते उन्होंने मिलके स्क्रीन नेम सनी चुनिया। उस दौर विच मन्या गया हैगा है कि यह नाम दर्शकों के विचकार ज्यादा कैची कूल अते फ्रेंडली लगेगा। वक्त दे नाल यह नाम लोगों की जुबान ते इस कदर चढ़ गया कि अज फैंस तो दूर इंडस्ट्री विच भी शायद ही कोई उन्होंने उन्होंने असली नाम के नाल बुलाउंदा होवेगा।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ताँ जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: जी आयनु जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते वाले रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.9 ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है वह है जो बहुत ही खूबसूरत जी अदाकारा दा 90s दी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अदाकारा है ते अज भी एवरग्रीन है उन ही खूबसूरती बरकरार है। नाम है जी तबू। जी हाँ, अपनी बेहतरीन अदाकारी दे लई मशहूर एक्ट्रेस तबू दा नाम पहला कुछ होर सी, थोड़ा औखा सी, पर मैं तुहानूं दस दिंदी हां नाम सीगा जी तबसुम फातिमा हाशमी। जद उन्होंने फिल्मों विच एंट्री लई ना तां अपने इस वड्डे नाम नूं छोटा करके तबू रख लिया। उन्हां नूं लग्या कि वड्डे पर्दे दे लिहाज नाल इह नाम काफी क्रिस्प छोटा ते एक मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस वाला रहेगा। नाम बदलण दा इह फैसला फिल्म मेकर्स दे लई मार्केटिंग दे हिसाब नाल काफी सौखा रहा ते इस नाल उन्हां दी यूनीक पहचान भी बनी रही।
1: हाँ जी, मुड़ा सदुआ था।

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101.1 ते जी आपचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम हैगा जी ओ सैंडसम हंगताज, बॉलीवुड दे विच कई सालां तो छाए हुए है कि ने, अज भी उस तरीके दे नाल ने, ते फिटनेस दा तां उन्हां दी दा कोई तोड़ ही नहीं। नाम हैगा जी जॉन इब्राहिम। बॉलीवुड दे हैंडसम हंक जॉन इब्राहिम दा असली नाम पता है? नहीं पता तो मैं दस दिनी। जॉन इब्राहिम का असली नाम है जी फरहान इब्राहिम। जी हाँ, मॉडलिंग के दिनों विच ते फिल्मों विच आउण तो ठीक पहला उन्होंने अपना फर्स्ट नेम बदलन का फैसला लिया। उन्होंने जॉन नाम चुनिया क्योंकि इस सुनने विच काफी सिंपल मॉडर्न ते इंटरनेशनल लगता है। नाम दे इस छोटे जे बदलाव नाल उन्होंने मॉडलिंग कैंपेन तो लेके बॉलीवुड फिल्मां तक हर जगह एक बेहद वखरा ते मजबूत पहचान दवाउण विच मदद मिली सी।

हाँ जी जी आया जी, पर बेड़ा हो चुके हैं तो टाटा बाय बाय कहता जी आया फिर भी कह लिया क्योंकि एक नाम बहुत इंपोर्टेंट सी जिस बारे थानू दसना बेहद जरूरी सी। मैं सोचा जान तो पहला उन्होंने बारे थानू दस ही दिनी है ते वो नाम है चीफ रेखा जी। हाँ बॉलीवुड की आवर क्वीन ब्यूटी रेखा ता असल नाम रेखा नहीं सी, असल नाम सी जी भानु रेखा गणेशन। उन्होंने जब उन्होंने सिनेमा की दुनिया विच कदम रखिया ना तो उन्होंने अपना नाम छोटा करके सिर्फ रेखा रखना पिया। ये नाम ना सिर्फ बेहद सिंपल अते एलीगेंट सी बल्कि आम दर्शकों के लिए इसनू याद रखना भी काफी सौखा सी। अगे चल के सिर्फ एक नाम वाली अनोखी पहचान भारतीय सिनेमा के इतिहास विच सब तो आइकोनिक शख्सियतों विचों एक बार की हैगी है। इस गल दे नाल तां मेरे ख्याल सारे ही सहमत ने। बाकी थोनू के कौन एक्टर है जिसका असली नाम ज्यादा वधिया लग्या हैगा है चेंज किते हुए नालों वो तुसी सानू जरूर दस्यो। रेडियो ब्रिसोनी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जिसे brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी अपनाउणा हो अपनाओ पर साडा गला बात जरूर करते रहा करो है ना। तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो ते मैं हुणे वापस आउनी आ ना ना ना ना कल वापस आउनी आ करन दे लई ठेर सारियां गलां ते चलो फिर जाण वेले इक्को गल कहणी है कि रखो अपना ख्याल। सत श्री अकाल।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनु।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रणत भजत। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: डिजिसेल बेटर टुगेदर।
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: तुम जीत गए।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

हरे कृष्ण। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। आज हम आपकी सेवा में इस कौन संस्था के एक बहुत ही माननीय भक्त प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का गरुड़ पुराण पर आधारित एक इंटरव्यू प्रस्तुत करते हैं। संभावना है कि ये इंटरव्यू 2 सप्ताह तक चलेगा, तो आज हम आपके समक्ष ये पहला भाग आज हम आपके

0: आ रहे हैं, विजन में चेंजेस आ रहे हैं, अग्नि, अपनी शरीर की अग्नि चेंज होने चालू जाती है, ये थोड़ा डिटेल में समझाइए कि डेथ के पहले इंसान किस टाइप के साइंस को एक्सपीरियंस करता है।
1: देखिए, अगर हम शास्त्र के बेसिस पे जाएं तो डेथ के पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, लाइक यम के दूत जो होते हैं उनका प्रकोप दिखने लगता है, और आपकी जो शैडो फॉर्म होती है जब हम अपने चलते हैं तो शैडो जो है ना मिस होने लग जाती है। आप बैठेंगे सन के नीचे तो आपको शैडो नहीं दिखेगी, लाइट के अंदर तो, क्योंकि आदमी वृद्ध होता है तो इतना ध्यान नहीं दे पाता, बट जो उसके फैमिली पीपल है इतना हम लोग अपनी शैडो पर ध्यान भी नहीं देते, शैडो मिसिंग होता है। दूसरा, कोई ना कोई डिसीज, क्रोनिक डिसीज व्यक्ति को पकड़ेगा तो वो भी एक चांस होता है, रिवाइव भी कर सकता है, लेकिन क्रोनिक डिसीज ऑल्सो सिम्टम की व्यक्ति के जाने का कोई ना कोई कारण तो बनना चाहिए, तो उसमें से रोग एक कारण है। एक कारण है शैडो का मिस हो जाना, तीसरा कारण है यम के दूतों का दिखना, तो उसको बैड ओमेंस, बुरे स्वप्न आने लग जाएंगे, उसको लगेगा जैसे कोई उसको खींच रहा है, कोई उसको बोल रहा है गेट रेडी, तैयार हो जाओ। तो अभी कुछ एक व्यक्ति का शरीर छूटा था हमारे ही जान पहचान में, तो उन्होंने बताया कि मुझे यम दूत की जगह विष्णु दूत दिखाई देते हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम विष्णु लोका, और वो कह रहे हैं कि तुम तैयार हो, तुम्हारा समय आ गया है। सो हमने उनको पूछा किस कलर के दिख रहे थे, कैसे थे, तो बोला गोल्डन फॉर्म था, 400 थे, और वो बार बार आकर के बोल रहे तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया, तैयार हो जाओ। तो कोई डिवोशनल लाइफ में था तो उसको इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई डिवोशनल नहीं है तो उसको बताते हैं कि भयानक बड़े तीन यमदूत होते हैं, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो कर्म किए, वचन से जो कर्म किए, और मनसा वाचा, वचन से, मन से और कर्म, तीनों में जो कर्म किए हमने, उन तीनों के रेप्लिका प्रतिक्रिया में तीन यमदूत आते हैं टू जस्टिफाई कि भाई इसने मन से जितने किए उसके लिए एक मन का दूत, वचन से वचन का और कर्म से कर्म का, तीन यमदूत आएंगे, एंड देन दे विल विद दंड इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में एक दंड रहेगा, एक हाथ में पाश रहेगा, पाश यानी हंटर, और उस हंटर से वो दे विल बाउंड द सोल विद अ बॉडी, और फिर बॉडी से अलग करने के लिए उनके वो इतना सटल लेवल पर होता है कि दैट गोज इनसाइड द सूक्ष्म शरीर, उस सोल को, सटल बॉडी को पकड़ेगा। अब जो आत्मा उसका साइज बताया गया है श्वेता शर उपनिषद में, बाल अग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य च 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, इतनी छोटी आत्मा का साइज श्वेता शर उपनिषद में बताया गया है।
0: आत्मा का साइज भी होता है,
1: बाल के 10,000वां हिस्सा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, माइक्रोब से भी छोटा है। जैसे क्या भगवान गीता में कहते हैं, ममेव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातना, ऑल दी सोल्स इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो किसी भी पशु में हो या इंसान में हो, मेड अप ऑफ माइंड, ममेव अंशः। अब कहते हैं ना पेरेंट्स से जो बच्चे निकलते हैं, पेरेंट्स जैसे उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो भगवान से निकलने वाले जितनी भी जीवात्मा है, भगवान को बोला गया सत चित आनंद विग्रह, सिमिलरली जितनी सोल है वो भी सत चित और आनंद है, तो आत्मा सत चित और आनंद की बनी है, तीन तत्व,
0: सारी आत्माएं,
1: सारी वर्ल्ड की जितनी भी आत्मा है, चींटी से लेकर के ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऊपर स्वर्ग लोग, नीचे के लोग, सब सत चित आनंद, एनी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, सो एवरी सोल इज, सत मीन्स एटर्नल, वो कभी मरती नहीं, चित मीन्स ऑल नॉलेजेबल, यू जस्ट नीड टू रिवाइव द नॉलेज, इट्स ऑलरेडी देयर इन द बॉडी, एंड एटर्नल ब्लिसफुल, ब्लिसफुल है आनंद, बोलते ना हे आनंद आत्मा, तो आनंद आत्मा में आनंद है ना, लेकिन वो आनंद आत्मा क्योंकि शरीर से अपना अनुभव कर रही है, सोच रही मैं ये शरीर हूँ, इसलिए वो दुख के अंदर आ रही है,
0: तो आनंद एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही जो, तो अगर तो वो जैसे ही डिस्कनेक्ट आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वो आनंद की तरह
1: आनंद आ जाएगा। अभी प्रश्न उठता है कि आत्मा का कोई स्वरूप होता है, कि आत्मा निराकार स्वरूप की होती है, उसका कोई फॉर्म होता है, तो शास्त्र प्रश्न करते हैं, हाथ पहले बना या दस्ताने पहले बने, तो बोलते हैं कि भाई हाथ पहले बना, दस्ताना बाद में बना, तो शरीर तो कपड़े के समान है ना, तो ऊपर एक कवरिंग दिया गया, तो पहले सोल बनी, उसके ऊपर के लिए वस्त्र दिया गया। माँ की गर्भ में भी कहते हैं जब गर्भ धारण हो गया, यानी जीवात्मा पहले आई और फिर वो ग्रो करना शुरू करी, एक महीने में उसके यह शरीर बना, 9 महीने में पूर्ण शरीर बना, तो चेतना जो आई कि मैं गर्भवती हो गई, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया, इट मीन्स कि उसके अंदर एक जीवात्मा ने प्रवेश किया। अगर जीवात्मा ना आए, कोई लिविंग बॉडी ना आए, तो फिर इसका मतलब वो गर्भ धारण ही नहीं कर सकती है, और गर्भ धारण हुआ मीन्स कि जीवात्मा, यानी जीवात्मा पहले आई, अब उसके ऊपर का आवरण बनना शुरू हो रहा है, तो जो उंगलियां 5 हैं तो दस्ताना भी वैसे ही बनेगा, तो जिस तरह के हमारे हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, नाक हैं, ऐसे ही स्वरूप आत्मा का है। तो सोल के ऊपर एक सटल फॉर्म होती है।

0: माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, जैसे सूक्ष्म शरीर, और उसके ऊपर फिर आवरण बनता है पंच भौतिक शरीर का, तो वो किस फॉर्म में बनेगा? उसी फॉर्म में बनेगा जिस फॉर्म की वो बॉडी है भाई। जैसे मैं अपनी दस्ताना पहनता हूं तो साइज चेक करता हूं, तो आत्मा के ऊपर वैसे ही आवरण बनाया जाएगा जैसी आत्मा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा के ऊपर आवरण अगर मनुष्य का दिया गया तो क्या शेर के अंदर आवरण शेर का होता है?
1: Exactly.
0: इसका उत्तर यह है, शास्त्र कहते हैं कि जैसे कोई आदमी एयरप्लेन में फ्लाई करता है, पायलट है वो, उसके कुछ नॉर्म्स हैं बिफोर फ्लाई, कि आपको ड्रिंक नहीं करना है, ये नहीं करना है, अदरवाइज आप जर्नी नहीं कर सकते हैं। वो लेकिन नियम तोड़ता है, तो नियम तोड़ने के बाद वो पायलट तो है, वो ट्रेन पायलट भी सब कुछ आता है, बट ही इज बाउंड टू द ग्राउंड ड्यूटी पायलट। उसको ग्राउंड ड्यूटी बना दो, पायलट की जगह ग्राउंड फ्लाइंग काट दो उसका। अब ही इज ड्राइविंग अ कार ग्राउंड ड्यूटी, बट ही इज अ पायलट, ही वॉन्ट्स टू फ्लाई बट ही कांट फ्लाई। सिमिलरली जो आत्मा है वह भगवान चाहते हैं कि वह भजन करके मेरे धाम को आए, लेकिन क्योंकि आत्मा अपने बुरे कर्मों के कारण उस पशु शरीर में फंस जाती है, अंदर से चाहती तो है लेकिन वो फंस गई है। शूज मेरा 6 नंबर पहनता हूं तो 6 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 8 नंबर का पहना दे, पहन तो लूंगा, अनकंफर्टेबल रहूंगा। तो सोल अनकंफर्टेबल रहती है पशु शरीर के अंदर, जब वो मनुष्य शरीर में आती है तब उसको क्रिया करना, भजन करना, मेडिटेट करना उसको मौका मिलता है, वरना पशु शरीर में कैसे करे? तो उसकी जर्नी रुकी हुई है।
1: अभी हम बात कर रहे थे प्रभु जी कि किस टाइप के साइंस इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है जो मरने वाला हो। क्वेश्चन ये आता है कि अगर तो मेरी अननेचुरल डेथ हो रही है तो भी क्या मैं ये साइंस एक्सपीरियंस करूंगी? नेचुरल डेथ हो रही है तो ठीक है, साइंस मुझे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जैसे अभी आपने कहा, अननेचुरल डेथ में भी होती है?
0: देखिए, अननेचुरल तो कोई डेथ होती नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइडल डेथ। जब जन्म हुआ उसके साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित कर दी गई कि इस दिन इसकी मृत्यु होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग डेट का एक्सपायरी डेट कंपनी लगा कर देती है। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खाने का प्रोडक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही फिक्स्ड होती है कि इतने काल बाद इसको मरना है, एक्सपायरी डेट होती है। अब फर्क इतना होता है कि हमको अनुभव नहीं होता कि हमारी नेचुरल होनी है, कि हमारी हॉस्पिटल में होनी है, कि हमारी एक्सीडेंट में होनी है, क्या होना है। सिर्फ एक डेथ है जिसको कहते हैं सुसाइडल डेथ, जो कि निश्चित नहीं होती है। सुसाइडल डेथ इज अ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्री विल। भगवान ने हर जीवात्मा को एक सूक्ष्म आजादी दी है, फ्री विल। फ्री विल से वो क्या कर सकता है? जब इंस्टिंक्ट आती है कि मुझे समाप्त करना है शरीर को, अगर वो अध्यात्म का पालन करे, स्पिरिचुअलिटी का पालन करे, तो वो उससे बच सकता है। लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का पालन ना करके अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है, अपने माइंड को फॉलो करता है, तो अगर मान लो उसको 80 साल जीना था और उसने 40 में फ्रस्ट्रेट होकर अपने को फांसी लगा दी, तो बाकी के 40 ईयर्स ही विल बी लाइक अ घोस्ट, उसको शरीर नहीं मिलेगा। कई लोग बोलते हैं, हम अगर बोलते हैं अंतकाल में राम का नाम लेके, कृष्ण नाम लेके मर जाएं तो हमारे को अच्छा दाम मिलता है, तो क्या राम बोल के सुसाइड कर लें तो बचेंगे? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे करने से भी आप घोस्ट बनोगे, स्पिरिचुअल घोस्ट बनोगे। हाँ, एंड मैनी स्पिरिचुअल पीपल एक्सपीरियंस टेम्पल एरियाज में और धामों के अंदर भी घोस्ट होते हैं। एक माता जी के अंदर एक घोस्ट आया और उनकी आवाज चेंज हुई और उन्होंने बोला कि मुझे लेकर चलो मायापुर धाम कलकत्ता के पास, नवदीप धाम। तो वो बोलती, हमें तो मालूम ही नहीं है कौन सा धाम है। उनकी फैमिली बोलते मुझे लेके चलो, नवदीप लेके चलो। तो जो वीक सोल्स होती हैं, जो कि लोग घबराते बहुत हैं, जो डरपोक होते हैं या फियरफुल होते हैं, तो उन लोगों को देखते कि ये तो वीक है, इसके अंदर बॉडी में जाकर इससे अपने काम करवा सकती हूँ। तो उसकी जो लॉस्ट डिजायर्स होती हैं वो इसके द्वारा पूरी करवाएंगे। तो लॉस्ट डिजायर पूरी कराने के लिए आया तो बोले मुझे मायापुर लेके चलो, मैं जब पहले जिस शरीर में थी मैं मायापुर जा नहीं पाई। तो उन्होंने फिर भक्तों से पूछा, इस्कॉन डिवोटीज से पूछा कि मायापुर नाम की कोई जगह? बोले अरे इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, 122 कंट्री साथ रहती हैं, हमारा कलकत्ता में 100 एकर्स में इतना बड़ा गैप वो है, फार्म हाउस है, इतना बड़ा मंदिर। कह रहे अच्छा ऐसा कुछ है? बोले आप जाइए। वो जैसे ही पहुंचे वो लेडी की आवाज वापस फीमेल वॉइस हो गई, वो जो मेल वॉइस हो गई थी, ही वेंट आउट। तो स्पिरिचुअल घोस्ट भी होते हैं जिनको आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए शरीर छोड़ दिए थे और इस प्रकार से किसी के ओवर पार करके अपना धाम ट्रेवल किया उन्होंने। जैसे 3 खंड में गरुड़ पुराण बटा है, तो उसका जो मध्य भाग है उसको प्रेत खंड कहते हैं। प्रेत खंड यानी शरीर त्यागने के बाद जो आत्मा है वो प्रेत है। अब उसे भूत प्रेत कहे तो भूत का मतलब क्या? जो भूतपूर्व में शरीर में था और आज शरीर में नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व भूतकाल में अपनी गद्दी पे था, अब नहीं है, शरीर में था तो इंसान था, शरीर में नहीं है तो प्रेत है। तो उसका नाम ये प्रेत खंड। प्रेत कोई आक्रमण करने वाला प्रेत नहीं होता, प्रेत मींस जो जिसका शरीर नहीं है। मृत्यु हो गई तो 13 दिन तक वो प्रेत ही है ना, घर के अंदर रहता है, यात्रा चल रही है, सब प्रेत ही है वो।
1: प्रभु जी, आज गरुड़ पुराण के बारे में हम आपसे डिटेल में समझना चाहते हैं। आपने मुझसे कहा कि गरुड़ पुराण के 3 खंड है।
0: गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोक है और इसमें चैप्टर्स हैं 275 चैप्टर्स। हर पुराण में अध्याय है तो गरुड़ पुराण में 275 अध्याय है, तो 3 खंड में इसको विभाजित किया है। तो पहला इसका है आचार खंड। आचार खंड यानी आचरण बताते हैं कि कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को भगवान का भक्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी स्टोरीज उसमें आचार खंड में आती हैं। मध्य भाग इसका जो है उसका नाम है प्रेत खंड। उसमें शमशान की यात्रा, मृत्यु, मृत्यु के उपरांत फिर उसके डिसीजन, उसके कर्म, कौन से कर्म पर कैसा योनि, इसके बारे में चर्चा करी गई है। एंड देन थर्ड पार्ट इज ब्रह्म खंड। तो जो प्रेत खंड है उसको धर्म खंड भी कहते हैं क्योंकि धर्म बताया गया है, मृत्यु के उपरांत का धर्म और मृत्यु में शरीर में जीते जी का धर्म क्या है कि आदमी को गौ दान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है, धार्मिक नहीं है, तो उसको धार्मिक को अलग फल मिल रहे हैं, अधार्मिक को अलग फल मिल रहे, दोनों के डिस्टिंग्विशन किया गया कि कैसा कैसा फल मिलेगा। इसलिए स्वर्ग नर्क और स्वर्ग नर्क के अलावा है वैकुंठ, जहां जाने के बाद व्यक्ति को वापस संसार में नहीं आना पड़ता। स्वर्ग नर्क से वापसी है लेकिन वैकुंठ चला गया तो वापसी नहीं है उसकी, उसका लाइफ साइकिल पूरा हो गया।
1: अच्छा।
0: तो जो कहते हैं ना, मेक इट योर लास्ट बर्थ मीन्स डू सम कर्मास, यू शुड नॉट कम बैक अगेन, वरना जन्म मृत्यु चक्र में पुनः पुनः कभी पशु में, फिर धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट से मनुष्य बने, फिर मनुष्य बन के फिर अगेन रिसाइकल, फिर दोबारा से दिस साइकिल।
1: रिसाइकल भी होता है?
0: हाँ, वापिस, वापिस, वापिस।
1: क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो लगा कि
0: मनुष्य बनने के बाद वापस नहीं जाएंगे। जाएंगे।
1: अच्छा, मनुष्य बनने के बाद वापस हम पशु भाव में जा सकते हैं?
0: जा सकते हैं। इसका तो भागवत के अंदर इतना बड़ा स्टोरी है कि एक राजा थे जिनके नाम पर पूरी पृथ्वी को भारत देश कहा गया।
1: राइट।
0: तो भरत महाराज अपना सब कुछ त्याग कर एट द एज ऑफ 50 वो चले गए थे जंगल में पुलस ऋषि आश्रम पर, गंडकी नदी नेपाल के पास। तो वहां वो जप करते थे, ध्यान करते थे और बहुत उत्कृष्ट थे, जिसने अपने घर महल द्वार सब छोड़ दिया, यानी अच्छा वैराग्य स्थिति थी, और 6 घंटे 7 घंटे एक जगह बैठ के जप करते थे, ध्यान में रहते थे। उन्होंने एक दिन देखा नदी के किनारे, गंडकी नदी पे एक शेर है, वो किसी हिरणी, वो गर्भवती है और वो भाग रही और शेर उसको पीछे खाने के लिए दौड़ रहा है। तो उसने नदी को देखकर जंप करी, जब जंप करी तो हवा में ही उसका जो बच्चा था हिरणी का वो डिलीवर हो गया और वो नदी के अंदर गिरा और बहाव के साथ आने लगा नीचे बहते हुए। हिरणी तो उस पार जंप कर गई लेकिन शेर जो था वो बच्चे को खाने के लिए आने लगा। तो राजा भरत के मन में क्षत्रिय थे तो ही वॉज वेरी फाइटर, तो उन्होंने डंडे से उससे शेर को भगा दिया और उस बच्चे को बचा के ले आए। ऐसे कंपैशन आदमी बचा लेता है, लेकिन अब उनकी अटैचमेंट हो गई उस हिरण के साथ। हमें अपने घर में डॉग्स पैरट्स लगते हैं, लोग एक अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट शुरू हो गई और जब करे तो वो ऐसे सिर पे हाथ लगाते रहे उसकी, वो छोटा सा घूमता रहा हिरण का बच्चा उनकी कुटिया के अंदर। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दिन उसके पाँव में चोट लग गई तो उनको बड़ा दर्द होने लगा और उनको पता भी चल रहा है कि मैं इतना अटैच क्यों हो रहा हूं इसके साथ में, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। अब उनको क्या करना चाहिए था, उनको अपने गुरु के पास जाना चाहिए था और उनको चर्चा करनी चाहिए थी, बट बिकॉज ही डिड नॉट वेंट टू हिज गुरु अगेन, वो अपने आप ही डील करते रहे। कई बार होता है ना, हमने मेडिटेशन सीख लिया, हम स्ट्रगल कर रहे हैं बट हम अपने आप से डील करते हैं कि हमें आता तो है ही है, बट वी शुड गो बैक एंड डिस्कस कि आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल ऑफ माई स्पिरिचुअल लाइफ। वो स्ट्रगल करते रहे, उनकी डेथ हुई तो उस समय वो हिरण कहीं और था और वो बुलाते रहे कि हिरण तुम कहाँ हो, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, एक बार अपना दर्शन तो दे दो। तो गीता में लिखा है यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम ताम ताम एवहति कौन्तुए सदा तद भाव भावितः। भगवत गीता 8th chapter 6th verse 8वें अध्याय के 6 नंबर में लिखा है यम यम वापी स्मरण भावम, जब शरीर छूट रहा होगा और तुम जो स्मरण कर लोगे That becomes your tam tam ev hi kontuve, kunti putra, तुम्हें वही शरीर मिलने वाला।
1: यो तो आपका last thought determines your next life.
0: जैसे फोटोग्राफ होती है, पिक्चर खींचते हैं, श्लोका जी रेडी हुई, अपना सब कुछ किया और जब क्लिक फोटो का टाइम आया तो आपकी नाक पर मक्खी आके बैठ गई तो आपने ऐसे कर दिया। सो जो पिक्चर आएगा आप कहेंगे अरे मैडम टेढ़ा हो गया, नाक पे मक्खी आ गई थी। सो आपकी प्रिपरेशन ने हेल्प नहीं किया, आपके लास्ट एक्शन ने हेल्प किया। तो पूरी लाइफ की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज डिपेंड ऑन द लास्ट में आप करेंगे क्या। कहते हैं जन्म जन्म ऋषि तप करही अंत राम कहे आवत नहीं, पूरा जीवन तपस्या करे अंत में राम नहीं निकला तो क्या फायदा हुआ। तो होल प्रिपरेशन इज फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन विच इज डेथ, मृत्यु ही हमारा निर्णय करेगा असली योनि का क्या है। इसीलिए आत्माएं प्रेत बन रही हैं, वापस संसार में आ रही हैं, पुनर्जन्म हो रहे हैं,
1: लग रहा है बहुत ज्यादा पुनर्जन्म हो रहा है।
0: और इसका मेन कारण तो मैं नॉनवेज बताता हूँ।
1: अच्छा प्रभु जी, लोग तंत्र के जो मार्ग में होते हैं वो तो नॉनवेज खाते हैं, वो तो उनकी साधना का ही पार्ट है।
0: साधना जो है वो 3 गुणों में होती है।
1: अच्छा,
0: तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण। तमोगुणी साधना जो है वो आपको साधक बनाएगी लेकिन मन को शांत नहीं करेगी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांतः कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतः। शांत होने के लिए निष्काम होना पड़ेगा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना ही मैं ग्रो फेमस बनना चाहता हूँ, ना मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ कि दुनिया मेरा पूजन करे, ना मैं भोगना चाहता हूँ, ना बड़े आश्रम चाहता हूँ, मैं तो निष्काम हूँ, जो ठाकुर जी दे दे उसके सहारे, जाय विधि राखे राम ताहे विधि रहे, तो इति शांत मन। तो हम उनकी क्रिया को हम विरोध नहीं कर रहे, कोई भी सब अपने अपने लेवल पर लगे हुए हैं, पर वो तमोगुणी साधना है।
1: पर बाकी साधनाओं में भी तो आपको लिबरेशन अचीव हो सकती है ना, तो क्या आप कह रहे हैं कि इन साधनों में रीबर्थ का चांस ज्यादा है?
0: रीबर्थ का चांस ज्यादा है, क्योंकि जैसे बताया ना कि नॉनवेज खाने से क्या होता है, अमेरिकन रिसर्च कहती है कि जब आप किसी को काटते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है और उसके अंदर जो पेन होता है, जैसे आपने किसी मुर्गी को काटा, हलाल किया, झटका जो भी किया, जब आप उसे तो उसके अंदर एक फियरनेस होती है, दैट फियरनेस कम्स टू द पर्सन हु इज ईटिंग द फ्लैश, फियर। सो सब फियर स्टेट के अंदर रहते हैं, क्यों रहते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति को ध्रुव करना है उसके लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। लोग बोलते पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, अब प्रकृति का नियम कहता है द लॉ ऑफ नेचर, अगर आज मैंने एक को मारा तो उसको मारने से पहले आप पूछिएगा किसी नॉन वेजिटेर से भी जो काटता हो, उसको एक शब्द बोलना होता है मांसह, जो मांस कहते हैं ना, मांस खा रहे, मांस खा रहे, मांस नहीं होता, उसका शब्द है मांसह। मांसा शब्द संस्कृत से आया है, इसका अर्थ है मांसा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम मेरे साथ करना। तो अगर मैं बकरे को आज काट रहा हूं तो मैं बकरे को बोल रहा हूं, उसके कान में बोलना होता है बिफोर बलि देने से पहले मांसा, आज मैं तुम्हें काट रहा हूं कल तुम मुझे काटना। अच्छा, पर लोगों को संस्कृत का मीनिंग नहीं पता, तो इसलिए वो सिर्फ एक रिचुअल समझ करके मांसा तिलक लगाया काट दिया। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर 100 मुर्गे खाए तो 100 मुर्गे पशु से इंसान बने, क्योंकि जो जैसा कर रहा है वो इंसान को देख के शरीर छोड़ रहा है, तो अंतकाल का नियम उस पर भी लग गया और वो क्या बन गया, मनुष्य बन गया।
1: जो बुचर है वो उसकी बात,
0: हाँ जो बुचर है
1: और जो खाते हैं, जो बुचरिंग नहीं कर रहे हैं,
0: लेकिन उनके अंदर फियर तो आ ही रहा है ना, चेतना तो उनकी खराब हो रही है ना। जब हमने बोल दिया कि सारी सोल भगवान ने कहा ममेव अंश, मेरे ही अंश है, जब भगवान ने कह दिया, चाहे वो कोई भी हो चींटी से लेकर के, सर्व योनिषु कौन्तवे अहम बीज पदा पिता, कृष्ण गीता में कहा जितनी भी योनियां हैं, सर्व योनी, सर्व योनिषु कौन्तवे अहम बीज पदा पिता, मैं सबका पिता हूं, आई एम द फादर, सीड गिविंग फादर। तो जब पिता बता रहा है कि मेरे पुत्र हैं, तो एक पुत्र दूसरे पुत्र को खा रहा है कि वो बोल नहीं सकता, गूंगा है, तो पाप तो लग ही रहा है। एक व्यक्ति ने अगर 100 मुर्गे खाए तो 100 मनुष्य बन गए और मनुष्य एक मुर्गा बना, लॉ ऑफ नेचर जैसा तुम कर रहे हो वैसा। तो जब पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही, नॉन वेजिटेरियन से बन रही है ना।
1: जब मृत्यु होती है तो कहते हैं सोल के 9 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं बॉडी।
0: जी जी जी।
1: ये 9 एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं और इन एग्जिट पॉइंट्स से निकलने का सिग्निफिकेंस और आउटकम क्या होता है?
0: तो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन, 9 द्वारों का पिंजरा रहता पंछी कौन, रहे तो अचरज है उड़े तो अचरज कौन, एक कवि ने कहा है। पिंजरा बनाया आपने, उसमें 9 गेट लगा दिए और सब खुले हुए हैं, तो अगर उसमें पंछी रह रहा है ये अचरज की बात है, या उड़ गया तो अचरज की बात है, तो आश्चर्य क्या है, रहता
1: तो
0: है,
1: रह
0: रहा है तो आश्चर्य, उड़ गया तो आश्चर्य क्या, उड़ जाना क्योंकि 9 द्वार खुले। तो हमारी मृत्यु आश्चर्य नहीं है, हमारा जीवन आश्चर्य है। आज भी जिंदा हो, 9 द्वार है और उसमें से आत्मा निकल नहीं रही है, ये आश्चर्य की बात है। 2 आंखें, 2 नाक के नतने, 4 एक मुंह, 5 2 कान, 7 एक मूत्र विसर्जन, 1 मल विसर्जन, 7 2 नीचे 7 ऊपर, कितने द्वार हो गए, 9। दीज आर द 9 गेट्स। ब्रह्मरंध्र इज अ 10th विच इज अ क्लोज गेट, इट्स ओनली फॉर द योगीज एंड ब्रह्म योगीज, जो अपने ब्रह्मरंध्र को कर सकते हैं, ध्यानांतरण कर सकते हैं, परंतु फॉर अ जनरल क्राउड दोज आर नॉट योगीज, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग ओनली फॉर योगीज, वी आर टॉकिंग फॉर जनरल पीपल। सो अगर आदमी की डेथ टाइम पर बहुत जोर का यूरिन हो गया, पूरा बेड गीला हो गया, समझ लीजिए कि
1: मूलधारा से निकले,
0: मूलधारा
1: सबसे लोएस्ट फॉर्म,
0: लोएस्ट फॉर्म,
1: निचला बनेगा ये?
0: निचला व्यक्ति है, वो तो फिर जाहिर है नरक में जा रहा है वो।
1: अच्छा, 100%
0: नीचे वाले पार्ट्स है नरक, दोनों मूलधारा जो है और मल स्थान, वो दोनों, मुख खुला रह गया,
1: हाँ
0: बंद करोगे फिर भी बंद नहीं होगा, कपड़ा बांध के बंद करना पड़े, बंद नहीं होता, मुख से निकली आत्मा, कान से मैल निकलेगा, नाक से निकली नाक से मैल निकलेगा, आंख से आत्मा निकली तो आंखें बाहर को ऐसे बड़ी बड़ी आंखों ऐसे हो जाती है, फिर बंद करना पड़ा दबा के, फिर भी बंद नहीं होती है, इसको ऐसे क्लिप करना पड़ता है, बंद नहीं होती आंखें, लोअर नहीं होती, आंखें फट जाती हैं, और ब्रह्मरंध्र में तो फिर ये स्थान
1: क्रैक
0: से क्रैक होता है। तो अगर ऊपर के स्थानों में मुख और नेत्र, इसका मतलब है कि आत्मा स्पिरिचुअल थी, नाक और कान यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति, नीचे के द्वार नरक लोक की प्राप्ति। तो ये द्वारों से ही पता चल जाता है कि आत्मा का कहां पर गति हुई है, क्योंकि जो भजन करता है उसके मल मूत्र से नहीं जाएगी आत्मा, मुख से निकलेगा, उसे भगवान का नाम मिल रहा है और आंखों से उसने भगवान का दर्शन किया है तो आंखों से निकलेगी, वो प्रभु को देख करके छोड़ना चाह रहा है, ये भगवत धाम जाने वाली। और जो स्वर्ग जा रही है उसके कान और नाक, मैल निकला यहाँ पर पहुंच दिया, क्लीन कर दिया, फिर मेकअप करके आत्मा को तैयार करके मतलब शरीर को ले गए क्रिमिनेशन के लिए। बट एंड टाइम पे पूछिए या परिवार में कोई छूट रही हो तो देख लीजिए, या आप तो आप कहते आप क्रिमिनेशन ग्राउंड जाती है, पूछा करिए कि भैया कैसे हुई थी। तो मैंने भी बहुत जा करके रिसर्च करके एनालिसिस किया है, कैसे पता करे कौन स्वर्ग गया कौन नर गया, उसकी क्रिया से पता चलता है।
1: अच्छा,
0: और भी चीजें होती हैं, जो व्यक्ति शरीर छोड़ा उसकी लोग बुराई कर रहे हैं, जैसे जो आता है ना क्राउड आता है, आपको आप चुप रहकर बस मौन रहकर सुनिए कान से कि क्या बातें चल रही है, बोलेंगे अरे हमारा पैसा ले गया, बोला था कल दे दूंगा, देखो नसीब में क्या लिखा था, अरे कल ही दे देता तो मेरा क्लीन हो जाता, अब बेटे बच्चे देंगे नहीं, यानी आदमी नर्क गया है, इसने इतने लोन ले रखे, लोगों को डिस्टर्ब करके गया है। एक आदमी की सुनिए, कह रहे हैं जी अच्छे आदमी थे, जहां देखो वहां भंडारा, जहां देखो वहां मंदिरों में दान पुण्य इतना किया, ओहो बड़े कृपालु आदमी, बड़े दयालु आदमी, स्वर्ग गया। स्पिरिचुअलिस्ट लोग खड़े हुए हैं, आए कह रहे हैं अरे हमको कीर्तन दिया, मैं इतना डिस्टर्ब था, मेरे घर आए कभी किसी चीज की डिजायर नहीं करी, हमेशा इतने सिंपल हार्ट रहे, हमेशा लोगों को बोले तुम क्रिया करो, तुम भजन करो, तुम ये करो, तुम साधना करो, तुम ग्रंथ पढ़ो, हम लोगों को गीता सिखाई, हम तो उनको अपना गुरु मानते थे, ऐसे बहुत लोग बातें कर रहे हैं, वैकुंठ गया है।
1: और यहां से गए तो इसका क्या मीनिंग होता है?
0: ब्रह्मरंध्र तो ये है, फिर योगी है, जो कहते हैं ना जिसने आत्म शरीर से ही योग सिद्धि प्राप्त करी। हमारे इस्कॉन के शिला प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रह पर जा सकता है योगी अपने ब्रह्मरंध्र को छिद्र को ऐसे क्रैक करता है यहां से आत्मा, देन ही कैन गो टू डिजायर्ड प्लैनेट।
1: अब हमने लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ समझ लिया, डेथ इंसान की हो गई, कई प्रकार की डेथ्स होती है, हर टाइप्स ऑफ डेथ के बारे में मुझे बताइए और उनका आफ्टर लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि बहुत कि बच्चों की डेथ हो जाती है कभी बहुत छोटे, राइट, कभी स्टिल बॉर्न होता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, स्टिल बर्थ हो गया, बहुत छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, सुइसाइड हो जाते हैं। मैंने काफी देखा है प्रभु जी कि 28 और 32 के बीच में, हम जो एस्ट्रोलॉजिकल में सैटर्न रिटर्न बोलते हैं, उस टाइम में मैंने देखा है बहुत लोगों की डेथ होती है। फिर एक तो होता है कि एक्सीडेंट हो गया, अननेचुरल डेथ हो गई, फिर एक होता है हमने 84 इयर्स क्रॉस कर लिया, जो योगिक शास्त्र में बोला जाता है 84 इयर्स के बाद आपका कार्मिक स्ट्रक्चर थोड़ा डिसमेंटल होना चालू हो जाता है, बिकॉज आपने 1008 मून्स देख लिए होते हैं आपकी बॉडी ने। फिर होता है कि मैं 100 साल 90 नेचुरली जा रहा हूं, जो भी अब जैसे मुझे याद है मेरे दादाजी 2020 में गए थे एट द एज ऑफ 100 और 101, वो ना जाने से पहले बोलते थे वो रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, योगी नहीं थे वो, मिलिट्री पर्सन थे, ऐसे बोलते रहते थे वो। तो इन अलग अलग डेथ्स में क्या क्या आउटकम्स होते हैं मुझे बताइए।
0: तो इसमें क्या है कि हमको ये समझना है, जिसकी जितनी ज्यादा लंबी डेथ हुई है तो लोगों की दृष्टि से उसने उतना अच्छा जीवन जिया है, पर कार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके सबसे लंबा कार्मिक साइकिल पेंडिंग था, उसको 100 साल तक जीना पड़ा क्योंकि उसके 100 साल का कार्मिक रिएक्शन पेंडिंग था। कोई बच्चा गुजर गया वूम के अंदर ही, उसको 3 महीने के दंड मिला था संसार में जाने का, 3 महीने बाद उसकी मुक्ति हो गई, लिबरेटेड सोल। 10 साल का बच्चा था, आया 10 साल में लिबरेट हो गया।
1: हाउ कैन अननेचुरली भी चले जाता है,
0: अननेचुरली भी चला जाता है, एक्सीडेंटली चला जाता है, उसको उतना ही काल था। उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ महाभारत, अभिमन्यु डाइड एट 16 ईयर्स ऑफ एज, जबकि द्वापर युग में व्यक्ति की आयु 1000 ईयर होती थी। भीष्म पितामह वाज 350 ईयर्स, अर्जुन वाज 150 ईयर्स, कृष्णा वाज 100 ईयर्स, युधिष्ठिर वगैरह 100 इयर्स एंड अबव थे। तो इस तरह सबकी आयु बड़ी बड़ी थी। द यंगेस्ट वाज अभिमन्यु 16 इयर्स, और उतना शक्तिशाली था, उसने माँ की गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान पूर्ण ले लिया था। तो जब माँ की गर्भ में बच्चा आता है जीवात्मा, उसके सबसे पहले जो बनते हैं वो इयर्स बनते हैं। इसलिए वैदिक काल में हम लोग बताते हैं कि जो गर्भवती स्त्री है उसको अधिक से अधिक शास्त्र सुनने चाहिए, पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आई से नहीं आपके बच्चे को ज्ञान मिल रहा, कान से मिलेगा, क्योंकि वो सुनने की उसकी क्रिया चालू हो गई है। तो अभिमन्यु को अर्जुन ने पूरा चक्रव्यूह का ज्ञान सुनाया, एंट्रिंग का, एग्जिट का बता रहे थे तो सो गई, तो उसके कान जब इधर बंद हो गए तो उधर भी बंद हो गए, तो निकलना नहीं जाना। तो बाय दी कार्मिक रेशन उसको डाल दिया गया चक्रव्यूह में, जाओ जाओ जाओ। जब डाल दिया चक्रव्यूह में, बाहर नहीं निकला, तो अनेक अधिरथि और महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। अब अर्जुन का पुत्र जहां कृष्ण ही सारथी बने हैं, उनके सामने ही बच्चा मर रहा है, तो अर्जुन पलट कर पूछ सकते कि गीता हमको सुनाई और कष्ट भी हमको ही दे दिया, ऐसे आपके संग होने का क्या फायदा। बिकॉज अर्जुन वाज़ निष्काम भक्त, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया गॉड के ऊपर, भगवान पे, उल्टा उन्होंने एक्सेप्ट किया उस डेथ को। तो भगवान ने उनको इस बात को रिवील किया, अर्जुन डोंट वरी, तुम्हारा कोई पुत्र जल्दी नहीं मरा है, ये पुत्र तुम्हारा था ही नहीं। कौन था? जब मैं अपनी लीलाओं को करने के लिए द्वापर युग में आ रहा था, तो सभी देवताओं से मैंने एक लेटर डाला कि सब अपने अपने पार्टिसिपेंट करने के लिए मेरे इस क्रिया में आ जाओ। तो अलग अलग लोगों से सारे लोग मेरे इस लीला के अंदर सहयोग करने के लिए आए। तो चंद्रमा जो था मून, उसके पुत्र की वो मैंने बोला कि तुम भी आओ, तो चंद्रमा बोला कि मुझे अपने पुत्र से बड़ा प्रेम है प्रभु, इसको लीला में मत लाइए, क्योंकि लीला में गया तो द्वापर युग की लीला हजारों वर्षों की होती है, तो मेरे को बहुत इतना दिन में रह नहीं पाऊंगा पुत्र के बिना। तो भगवान बोले इसको भेज दो, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा मेरी लीला में पार्ट करना, बिकॉज आई एम गॉड एंड एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट, बट मैं कुछ ऐसी लीला करूंगा ही विल कम बैक अर्ली। तो जब अभिमन्यु को मारा तो मून तो खुश हो रहा है कि चंद्रदेव को तो उनके पुत्र मिल रहे हैं, और यहां पर लग रहा है अर्जुन दुखी हो रहा है, क्योंकि ये तो ड्रीम वर्ल्ड है ना, यहां पर तो हम कुछ दिनों की लीला करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा एटर्नल तो ऊपर है ना। तो ये जो कंसेप्ट नहीं समझते उनको रियल अभी लगता है इम्पैक्टफुल, अरे 3 महीने का बच्चा मर गया, 10 साल का मर गया, अरे क्या पता वो जिसने प्रार्थना करी प्रभु से कि मेरे पास ये देवता आ जाए वापस, तो वो देवता प्रसन्न हो रहा है ना, उसका पुत्र जल्दी आ गया, किसी दंड से 10 साल के लिए आया,
1: और वो इंसान का कर्म भी कम होता है
0: बिल्कुल ऑब्वियसली, कोई 80 साल जी उसका लंबा कर्म। एक और सुंदर सी बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, दीर्घायु भव,
1: आयुष्मान
0: भव, तो एक व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद मिलते थे, तो उसने अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मुझे हमेशा दीर्घायु भव कहते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, गुरुजी मैं चाहता हूं मैं लंबी आयु जीऊं, पर चिंता मत करो तुम इस शरीर में अमर रहोगे, 300, 350, 400 जितने साल तक तुम्हें इच्छा मृत्यु है, जब चाहोगे तभी मरोगे। जैसे भीष्म पितामह को भी था इच्छा मृत्यु का वरदान, तो 56 डेज तक तीरों की सैया में पड़े रहे, खून खत्मप्त हो चुका है लेकिन वो मर नहीं रहे, बिकॉज उनको पावर है इच्छा मृत्यु, तो उसको भी मिल गई। अब मिल गई तो वो ऊपर के पहाड़ों ऋषिकेश से भी ऊपर चला गया, स्वर्ग रोहिणी से भी ऊपर, सेतोपंत से भी ऊपर चला गया, तो वहां एक कुंड था, उस कुंड का जल पी लो तो अमर हो जाओगे। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला तुम्हारी योगी क्रियाएं सारी पूर्ण हो चुकी हैं, बस तुमको सेतोपंत जाके उस गुफा में इतना जल पीना तो तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम मरोगे नहीं। कहा ठीक है गुरुजी, मेरी सारी क्रिया पूर्ण हो रहा। तो ही वॉज वेरी यंग, 50-60 ईयर्स का ही था, चढ़ता रहा पहाड़ों पर, चढ़ा पहुंच गया सत्तोपंत, पहुंचा तो 50-60 साल का, इतना यंग भी नहीं था, मिडिल एजेड था, मेहनत करके पहुंचा और जल पीने लगा तो एक आवाज आई, रुक जाओ मत पीना। तो देखा कौन बोला, तो देखा कि एक आदमी की आई बॉल्स लटक रही है ऐसे, शरीर के ऊपर से चमड़ी स्किन हट चुकी है, सिर्फ रिब केज है, बैकबोन है, थोड़ा थोड़ा फ्लैश कहीं कहीं चिपका हुआ है और लगभग खत्म हो चुका है। मत पीना। तूने क्यों? बोले कौन सा काल चल रहा है? रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी तो त्रेता युग में आए थे, रामचंद्र जी चले गए, फिर कृष्ण भगवान का द्वापर युग चला गया, अब तो कलयुग चल रहा है। अच्छा कितने लाख साल बीत गए? लगभग त्रेता युग से 20 लाख वर्ष बीत गए। अच्छा तो बोले फिर आप कौन है? बोले मैं रामचंद्र जी के युग में मैंने इस कुंड का जल पी लिया था, तो जल पीने से क्या हुआ, मेरी आत्मा इस शरीर से अटैच हो गई, लेकिन शरीर तो अपनी डेफिशिएंसी में जा रहा है ना, हड्डियां भी गल रही है, कैल्शियम भी रिड्यूस हो रहा है, खाल भी गल रही है, आई बॉल भी निकल गए, लेकिन मर नहीं रहा हूं। तो कितना लंबा कार्मिक रिएक्शन मिल गया उसको। कभी कभी दीर्घायु दुखदायी भी होती है, इसके दीर्घायु नहीं उत्तम आशीर्वाद नहीं है। आप दीर्घायु तो बोल दिए, लेकिन कोई 100 साल पर बेड रिडन पड़ा हुआ है, यूरिन पास हो रहा है, घर वाले कह रहे हैं मर जाए, और वो आदमी दुखी हो रहा है कि मैं मरता क्यों नहीं, जैसे आपने कहा मुझे वे क्यों नहीं मिल रहा, रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति बोल रहे होते हैं बुजुर्ग लोग, लगता है यमराज हमारा भूल ही गया एड्रेस, इट्स लाइक दैट। तो उस स्थिति में आशीर्वाद देना चाहिए, तुम्हारी मति जो है वो भगवान में लगे, तो हम लोग बोलते हैं कृष्णेर मति रस, तुम्हारी मति भगवान में लग जाए। तो अभी हम डेथ वाले अगर पार्ट को समझें, तो शरीर से जब मृत्यु हुई हमने सिम्टम्स सुन लिए, अब व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो उसके 3 यमदूतों ने निकालकर उसको शरीर से बाहर खड़ा कर दिया। अब घर वालों को लगा कि डेथ हो गई, हॉस्पिटल में हो, एक्सीडेंट में हो, सुसाइड से हो, या जैसे भी हो, शरीर छूट गया, आत्मा बाहर आ गई,
1: यमदूत पक्का आएंगे।
0: जब व्यक्ति नेगेटिव सोल होगा,
1: अच्छा,
0: और देवदूत आएंगे जब पॉजिटिव सोल होगा, और अगर डिवोटी होगा तो विष्णु दूत आएंगे। तो 3 प्रकार के दूत बताए गए, मैसेंजर्स, यम, देव
1: विष्णु,
0: ऐसे तीन लोक भी हैं। देवदूत जो है ले जाएंगे स्वर्ग लोक, विष्णु दूत ले जाएंगे वैकुंठ लोक, और यमदूत ले जाएंगे नरक लोक। डिस्टेंस वही है पर जाने का मेथड अलग अलग हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर कर्मास। तो अब जैसे शरीर से आत्मा बाहर निकली तो व्यक्ति के सर परिवार वालों ने फोन करने शुरू कर दिया कि भाई मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो सारा परिवार इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब उस जीव आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा है कि उसका शरीर जो है वो पड़ा हुआ है और वो उसमें दोबारा री एंटर नहीं कर पा रहा। वो चाह रहा है लेकिन अब वो उसके बाद इतनी शक्ति नहीं कि वो दोबारा उसमें रिवाइव कर सके। तो उसके आसपास घूमता रहता है अपनी बॉडी के, अपना हाथ देख रहा है, अपना पैर देख रहा है, अपना मुंह देख रहा है, बार बार कह रहा है, अपनी बॉडी को छू रहा है लेकिन हमें नहीं दिख रहा। हम लोग तो रो रहे हैं कि ये तो यहाँ पड़ा हुआ है।
1: हर इंसान ऐसे कर रहा है,
0: हर इंसान
1: जो इंसान अटैच्ड है वही कर रहा है।
0: कौन सा अटैच नहीं है?
1: जो जिसे साधना कर रही हो,
0: साधना तो छोड़ देना, डिवोशनल पार्ट हटा दीजिए। पायस करने वाला हो, इम्पायस करने वाला, हर आदमी अपनी बॉडी से अटैच्ड है। पुण्य कर्म करते भी क्यों है? धर्म करते हैं ताकि अर्थ मिले। अर्थ मिलता है तो उससे क्या करते हैं? अपने काम इच्छा पूर्वी धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करते ही इसीलिए कि अर्थ मिले।
1: करेक्ट।
0: मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे, नहीं करी तो नहीं बांटेंगे। तो ये जो पूजा कर रहे हैं इसका पर्पज ही है टू गेट समथिंग। तो जो गेट समथिंग है तो मैं अपनी बॉडी में सकुशल स्वस्थ रहूं, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो स्वस्थ है यानी उसको शरीर से अटैचमेंट। शरीर से नहीं होगा तो अपने परिवार से होगा। मेरे बच्चे, मेरे डिसाइपल्स, किसी ना किसी से तो अटैचमेंट है। अब उनको देखता रहता, देखता रहता है। तो परिवार के लोग उस बॉडी को ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करके ले गए, क्रिमिनेशन। अब वो अपनी ही बॉडी की छाती पर बैठेगा और बोलेगा कि तुम मत जलाओ इसको, मैंने इतने साल इसको प्रिपेयर किया, पता नहीं कितने क्रीम पाउडर लोरेल वोरेल सब लगाए और अभी तुम इसको जला दोगे, ऐसे मत करो बेटा, मैंने तुमको शिक्षा ली। कोई सुन नहीं सकता क्योंकि वो सोल के साथ कनेक्शन नहीं है उनका कोई। वो तो शब्द सुनते थे मुंह से निकलने वाले, आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते। तो दैट इज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। अब वो उसको ले गए, आत्मा के शरीर को जला दिया, अस्थि विसर्जन कर दिया। तो पिंडदान किए जाते हैं वहां पर जब किसी की मृत्यु हो, तो 5 पिंडदान उसी समय करने चाहिए जब उसकी मृत्यु हो जाए। पिंडदान क्या होता है? कुछ आटा लेते हैं और कुछ सीसम सीड्स लेते हैं, तिल लेते हैं, तिल और आटे को मिक्स करते हैं और उस व्यक्ति के नाम लेकर के दान करते हैं कि हमारी ओर से हाथ के लिए, पैर के लिए दिया जाता है। अगर ये दान नहीं किए जाए तो 13 दिन बाद जब वो आत्मा को जाना होगा टू यम लोका, तो उसके पास कोई बॉडी नहीं होगी। उस शरीर का नाम होता है अतिवाहक शरीर। अतिवाहक यानी वेरी हाई स्पीड में चलने वाली बॉडी होती है और वो ट्रांसपेरेंट होती है, लाइक अ मिरर बॉक्स, निकाल के ग्लास विंडो में डाल दिया जाए। तो जैसे आपने कपड़ा पहना है, आप लिविंग बॉडी हो, और वही डमी को पहना दो, उसका भी एक शरीर है लेडी का, वो डमी है। तो जैसे आपके ऊपर ये शरीर है, ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, दिखने में ग्लास जैसा शरीर होता है, पर यहां से निकल जाए तो आपको दिखेगा नहीं। अब वो अतिवाहक शरीर बैठा है पेड़ के ऊपर, घर के ऊपर, सब जगह सेटल हो गया। अब वो समझ गया कि परिवार वाले अब मुझे नहीं स्वीकार। 13 दिन तक गरुण पुराण पड़ी जाती है ताकि उसके कर्मों को सुनकर के, वो सोल सुनकर के समझे उसने क्या किया और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको स्वीकार कर ले। गीता के पाठ किए जाते हैं ताकि वो समझे कि सच में मृत्यु होती है, तू मर चुका है, अब तुझे शरीर नहीं मिलेगा वापस। तो डिटैचमेंट परिवार का होना हो उस आत्मा के लिए, डिटैचमेंट के लिए गरुण पुराण का पाठ बताया गया। लोग सोचते हमारे लिए, लोग तो सुन ही नहीं रहे होते, कोई खाना बना रहा है, कोई रिसेप्शन कर रहा है, कोई किसी फैमिली मेंबर से मिल रहा है, पंडित जी अपना गरुण पुराण रिचुअल कर रहे हैं, पर हो किसके लिए रहा है? वो आत्मा बैठकर सुन रही होती, सुनाओ अच्छा ये कर्म का ये मिलेगा मुझे, इस कर्म का ये मिलेगा, पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुमने सुना? पहले पढ़ा कभी? ग्रंथ तो इतने सालों से खोला कभी? फिर बैठकर वो रोता रहता है। 13वां दिन जैसे ही आया, यमदूत फिर आएंगे, कहेंगे 13 दिन हो गए, क्लीन सब कुछ, प्रीति भोज हो रहा है, सब लोगों का भोजन हो रहा है, सबने भोजन खा लिया, घर की शुद्धि हो गई, क्लीनिंग हो गई, आत्मा की यात्रा प्रारंभ हो गई। अब आत्मा जब चलना शुरू करती है, 3 यमदूत उसको लेकर के ट्रेवल करेंगे। तो इस पूरी यात्रा में 16 स्टेशंस गरुण पुराण में बताए गए हैं, 16 स्टेशन आएंगे। तो लगभग ये जो डिस्टेंस बताया गया 86,000 योजन, 12 किलोमीटर के यूनिट को 1 योजन, तो ऐसे 86,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना एक साल के अंदर आत्मा को, उस ग्लास बॉडी के अंदर, ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर। तभी एक गाना आता था ना, ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। अब जैसे ही डेड बॉडी हुई, क्रिमिनेशन हुआ, आकर के मुंडन किया, बच्चों ने, लड़कों ने मुंडन किया जिन्होंने आग लगाई। मुंडन हुआ तो जो ये बाल है ना, इस बाल को छाता बना के उस सोल के ऊपर लगा दिया गया, आत्मा के उस ग्लास बॉडी के ऊपर वो लगा दिया छाता। बोले तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे लिए पुत्र ने या तुम्हारी बेटी के पुत्र ने या परिवार जनों ने ये बाल दिए तुम्हारे लिए, तो उसको एक जगह पेस्ट करके यम के दूध लगा देंगे, छाता आ गया। 247 योजन, 247 योजन उसको डेली चलना है और 348 डेज में यात्रा पूर्ण होगी, यम लोक के गेट पर पहुंचेगी। यम लोक के बाहर एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी के अंदर जल भरा हुआ है, वो जल जीवात्मा को अगर पायस कर्म करके गया होगा, तो अभी मैं पायस अनपायस तीनों का सारा बताऊंगा, पहले वैतरणी बता रहा हूं। वैतरणी के उस पार यम का लोक है जिसका नाम है संयमपुरी लोक। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, मैं पूरा बोलूंगा नहीं क्योंकि उसको बोलना नहीं चाहिए, उच्चारण करना नहीं चाहिए, मन में करना चाहिए, सिर्फ तीन शब्द बोल रहा हूं, ओम भू भुव स्वाहा। तो भू का मतलब है भूलोक, भुव का मतलब है ऊपर एक लोक है संयमपुरी लोक, और स्वा का मतलब है स्वर्ग लोक। तो तीन लोगों की चर्चा इस मंत्र में हुई है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्वर्ग जाने की कामना करते, स्वर्ग लोकवासी हो गए। भुव लोक इज अ स्टेशन वेयर डिसीजन इज बीन मेड, दैट इज जजमेंट डे स्टेशन प्लेस, जहां पर जजमेंट होगा, कार्मिक रिएक्शन जो भी कर्म किए हैं, तो उसको भुव लोक कहते हैं, और हम जिधर रहते हैं उसको भू लोक कहते हैं, अर्थ प्लैनेट। तो भू से भुव लोक की यात्रा हो जाएगी आपकी 348 डेज में। वैतरणी नदी पार करके आप यम लोक भुव लोक पहुंचेंगे, जिसको संयमपुरी नाम भी उसका दिया गया, एड्रेस संयमपुरी लोक। वहां पर यमराज, चित्रगुप्त, यमदूत सब बैठे हुए हैं। अब दोबारा से शुरू करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, यहां डेस्टिनेशन है जहां जजमेंट होगा। एक आदमी जिसने पूरा जीवन पाप किए, नॉनवेज खाया, एल्कोहल पिया, परस्त्री संग किया, झूठ बोला, भगवान का कभी स्मरण नहीं किया, चीटिंग प्रोपेंसिटी करी, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, जिसके लिए वो चीटिंग से जीतना चाहा, गेम्स, ये अपना समय मेटेरियल वर्ल्ड में अधिक लगाया, आसक्त रहा संसार में, कभी भगवान के ईश्वर का स्मरण नहीं किया, कभी कोई योगिक क्रिया नहीं करी, कभी वैदिक ग्रंथ नहीं पढ़े, ऐसा जो कार्मिक गंदा आदमी है, वो जब शरीर से निकलेगा तो यम के दूत अपने हाथ में दंड और पाश हंटर रखते हैं, और कुछ यमदूतों के हाथ में मुदगर होते हैं, बड़े वाले वो जो पहलवान लोग नहीं लेते, ऐसे घुमाते हैं गदा टाइप का, वो मुदगर कहलाता है, उनसे उसको दंड देते हैं, मारते हैं। वो चीखता है कि मार क्यों रहे, कर जब शरीर था तुमने क्या कर्म किए, अब चलो। अच्छा, परिवार को एजुकेशन नहीं दी तो परिवार ने उसके लिए ना तो मुंडन किया,
1: ये भी हो रहा है आजकल, मुंडन होता ही नहीं आजकल,
0: तो पिताजी को छाया नहीं है, छाया नहीं है, चप्पल दान नहीं करे तो पिताजी को चप्पले नहीं है, अब वो आतिवाहक पिंड दान नहीं किया तो शरीर नहीं है, अब शरीर नहीं है, छाता नहीं है, चप्पल नहीं है, तो वो जीवात्मा जो इतनी सूक्ष्म थी उसको एक शरीर देते हैं, यातना शरीर। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, 84 लाख योनि बोलते हैं, उन 84 लाख में कुछ योनियों के नाम मैं बता रहा हूं आपको, अतिवाहक, देव योनि, और एक है यातना शरीर जो कि नर्क में रहेगा ना, तो यातना शरीर। लोग बोलते हैं ना, जब शरीर यहां छूट गया तो कष्ट किसको मिलेगा, आत्मा तो छोटी होती है, एक बॉडी मिलती है उसका नाम है यातना, पनिशमेंट बॉडी, यातना शरीर
1: सबको मिलती है,
0: सबको मिलेगी जिसको भी ले जाना होगा। आप जैसे जेल जाते हो तो वो धारी वाला कपड़ा नहीं पहनाते हैं, सबको मिलता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, कर्म के अकॉर्डिंगली मिल रहा है,
1: ओके,
0: नॉट बाय योर प्रोफेशन। तो जैसे आपने कर्म बुरे किए थे, यमदूत ले गए, परिवार वालों ने कोई पिंडदान नहीं किया, कोई छाता नहीं, कोई चप्पल नहीं, यातना शरीर में खींचा जा रहा है। 16 स्टेशन, सौरीपुर, नगेंद्रपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, शीतढायपुर, अति तीव्रपुर, ऐसे 16 स्टेशन है। इन स्टेशन पर हर 21 दिन बाद यात्रा जाकर रुकेगी, लगभग 20 से 25 दिन के अंदर यात्रा पहुंचती है। इसलिए बोलते हैं जब किसी की डेथ होती है, मावस का भोजन निकालो, अमावस्या का भोजन निकालो, या तिथि पर ब्राह्मण भोजन कराओ, गऊ को भोजन कराओ, जो भी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ दिया उसके परिवार में 11 महीने तक उसको हर महीने का भोजन निकालना होता है, एक प्लेट बनेगी, भोजन निकलेगा, गाय को खिलाओ या ब्राह्मण को, आपके ऊपर है, वो भोजन उसको वहां मिलेगा स्टेशन पर। ये नहीं किया, वो भोजन भी नहीं मिल रहा, भूखा चल रही है आत्मा। अच्छा, यातना शरीर में एक बड़ी डिफिकल्टी क्या है, इस बॉडी में पेन होता है तो आदमी मर सकता है, शरीर छूट सकता है, यात्मा में छूटता नहीं है, दंड मिलेगा, कष्ट होगा, लेकिन मर नहीं सकता क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी
1: नहीं सकता, भाग नहीं सकता,
0: कुछ नहीं कर सकता,
1: अब वो चल नहीं सकता,
0: मर ही नहीं सकता, अब वो चल रहा है, दंड खा रहा है, दंड खा रहा है, दंड खा रहा है। 16 स्टेशन, अतिशी ढायपुर पे हैवी बर्फ पड़ रही है, ठंड लग रही है, कंबल दान नहीं किए हुए, कंबल नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे कष्ट लेता हुआ, पिटता हुआ, 16 स्टेशन पार करता हुआ, 11 महीने बाद आत्मा पहुंची उस नदी, वैतरणी नदी के। वैतरणी का मतलब है, वै मतलब ट्रुथ, तरणी मतलब टू क्रॉस ओवर, तो क्रॉस ओवर द ट्रुथ। तो वहां एक गाँव खड़ी होती, गाय से पूछा जाता है, ये दंडनीय व्यक्ति है, इसको पनिशमेंट मिलना है, क्या करें, इसने कभी गाय दान नहीं दिया, गाय सेवा भी नहीं करी, इवन गाय का फ्लैश खाया, मीट खाया इसने, ओहो, इसको पूछ पकड़वा दो। तो पूछ पकड़ता गाय की, तो वो जो नदी है वितरणी, वो कैसे दिखती है उसको, पूरा उसमें पस पीप ब्लड पूरा गंदी नदी है, उसमें से ऐसे पकड़ करके उस पार ले जाया जाएगा, मुंह पर उसके पीप लग रहा है, पस लग रहा है, ब्लड लग रहा है, पीता खाता उसको रिक्रॉस करके, और उस नदी का डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर बाद उस पर पहुंचा, यमराज बैठे हैं, लाइन लगी हुई है लोगों की, यमदूत खड़े हुए, सब खड़े हुए, चित्रगुप्त पढ़ो, क्या तुम ये जीवात्मा थे, इस शरीर से आयो? जी हाँ। तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, मेरे पास शिक्षा ही नहीं थी, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, शिक्षा नहीं तो लेनी चाहिए थी, तुमने एजुकेशन के लिए शिक्षा थी, इंजीनियरिंग के लिए, बिजनेस के लिए, खाने के लिए, होटल के लिए, ग्रंथ के लिए शिक्षा नहीं थी। यमराज बोलते अब क्या किया जाए इसका, चित्रगुप्त बोले महाराज इसको दंड मिलना चाहिए। तो यमराज उसको भयानक रूप में दिखाई देते हैं, बड़े सींग, बड़े खतरनाक, एकदम ऐसे मार देंगे, एकदम लाल लाल आंखें, ब्लैक बॉडी, पूरा शरीर में दंड ले रखे हैं, और एक हंटर मारते हैं उसको, जीवात्मा रोती चिंगारती लेकिन कुछ नहीं। कहां भेजे इसको? नरक लोक में। तो नरक लोक भुव लोक से साउथ डायरेक्शन में है, इसलिए जब भी डेथ होती है तो क्रिमिनेशन ग्राउंड में सब लोग एक ही चेक करते रहते हैं,
1: सिर का है। अच्छा, इसलिए करते हैं।
0: नर के दिन साउथ डायरेक्शन।
1: अच्छा,
0: तो साउथ में सिर रखते हैं, लेकिन जो उसकी दृष्टि है वो साउथ में नहीं पड़नी चाहिए, जीवात्मा की आंखें जो है वो साउथ की तरफ नहीं होनी चाहिए, सिर साउथ को हो सकता है, तो साउथ की तरफ सिर करके रखना चाहिए। अब उन्होंने क्रिमिनेशन हो गया, सब हो गया, आत्मा वहां पहुंच गई, अब नर्क लोक में ट्रेनिंग दी जाएगी।
1: ट्रेनिंग
0: क्या है? क्योंकि जब संसार में भी तो दुख भोगने आएगा ना, तो जेल का नाम है सुधार ग्रह, प्यूरिफिकेटरी, रिफॉर्मेशन, तो रिफॉर्म करना है, नॉट टू पनिश करके दंड देके हड्डी पसली तोड़ के, ऐसे थोड़ी ट्रेनिंग देनी है। अब उस जीवात्मा के कर्म ऐसे हैं कि उसको पशु योनि में जाना है, जो मैं बोल रहा था राजा भरत, राजा को हिरण बनना था, तो ऐसा थोड़ी कि राजा मरा तुरंत हिरण बन गया, उसको हिरण बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमको अगर पिग बनना है नेक्स्ट लाइफ में, तो एक आदमी जो एसी में बैठा है, बढ़िया फूड खा रहा है, एंड नेक्स्ट लाइफ में वांट टू बी अ पिग, तो कैसे बनेगा? उसकी ट्रेनिंग के बिना धूप में रहना, वो वैसी आवाज निकालना, वो कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी? ट्रेनिंग कैसी है?
2: तो आप सुन रहे थे गरुड़ पुराण पर आधारित श्लोक जी के द्वारा प्रशांत मुकुंद प्रभु के इंटरव्यू का पहला भाग, और अब आप सभी की सेवा में कुछ भजन कीर्तन।

विश्वास को कभी तोड़ना नहीं। मेरे तन से प्राण तभी जाए ओ केशवा, मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेदवाणी।

0: आए असी बुले न समाए साडे घर तशरीफ लिया साडे सारे वालों जी आया।
1: हेलो जी, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन। कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप आप सभी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छे और अच्छे मूड में होंगे। सो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। जी हाँ, और रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम शुरू हो चुका है भाई, जाने का सफर। तो दोस्तों, अगर आप ना अभी अभी जस्ट उठे हो तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप ऑलरेडी ना रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल चुके हैं तो भी वेरी वेरी एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग। और अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो भी टेंशन नहीं लेनी है, ट्रैफिक को खुलवा देंगे हम। सो दोस्तों, आज की सुबह को स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ, एक कप चाय, फिर भाई कॉफी के साथ। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, अच्छे म्यूजिक तो बनते ही है। सो ब्रिस्बेन, टेंशन नहीं करनी है, वॉल्यूम को अप करना है, मूड को अप करना है, बिकॉज योर मॉर्निंग स्टार्ट्स राइट हियर। तो आइए सुनते हैं ये गाना, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी। सो दोस्तों, सुबह सुबह ना एक छोटी सी पॉजिटिव बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, हर सुबह ना एक न्यू बिगनिंग होती है। कल क्या हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आज क्या करना है वो हम डिसाइड जरूर कर सकते हैं। तो आज किसी ना एक चीज पर जरूर फोकस कीजिए जो आपको जेन्युइनली हैप्पी करती है। और हाँ, आज किसी ना एक पर्सन को बिना किसी रीजन के भाई कॉम्प्लीमेंट जरूर देना। हाँ, मुझे भी दे सकते हैं हो सकता है भाई आपकी एक छोटी सी लाइन उनका पूरा दिन बना दे। सो चलिए फिर इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुनते हैं एक ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग ट्रैक, और उसके बाद हम भाई चिटचैट तो करते रहेंगे, साथ ही साथ भाई टेंशन ना लीजिए, आपको न्यूज अपडेट्स देती रहूंगी ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। आइए सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, तो इस ट्रैक के साथ एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रह्मवाणी में वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया और सुनने के लिए भाई बहुत ही बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, अब मुझे आप ये बताइए भाई, आपकी मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट किससे होती है, चाय से या फिर कॉफी से? और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप दोस्तों जब भी मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो ऑब्वियसली भाई अलार्म तो जरूर लगाते ही हैं, और आप जब अलार्म बजने लगता है, क्या आप सीधा अलार्म बजते ही उठ जाते हैं, या फिर दोस्तों अलार्म को पहले 5 बार स्नूज करना जरूरी होता है? जी हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों का आंसर सेकंड वाला ही होगा, क्योंकि उनमें से मैं भी हूँ। स्नूज तो हम करते ही हैं भाई, फिर भी ठीक है ना, उठते नहीं है, उठना तो अपनी मर्जी से ही है। वैसे दोस्तों, जो लोग भी भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज फोन साइड में जरूर रखिएगा, सीट बेल्ट लगाइए और सेफ ड्राइव जरूर कीजिए। एंड आपका देखिए डेस्टिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेफली पहुंचना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको साथ साथ भी बोर नहीं करना है, गीत सुनाते रहना है, उसके बाद आएंगे बहुत सारी बातें लेके। आप जुड़े रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रह्मवाणी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्बानी में। सो ऑल राइट दोस्तों, अब सबसे पहले हम ब्रिस्बेन के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जानते हैं। अगर आप सभी दोस्तों कोई भी अगर आप में से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली फेरी सर्विसेज यूज करते हैं, तो आज घर से निकलने से पहले भाई अपनी सर्विस का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक कर लेना। ब्रिस्बेन में ट्रांसपोर्ट जो डिस्टरप्शंस है उसकी वजह से कम्यूटर्स को अपनी जर्नी जो है वो प्लान करते वक्त अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जरूर निकलेगा, क्योंकि ऑफिस पहुंचना है, रेस नहीं लगानी है, है ना भाई। तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिसवानी में। सो दोस्तों, अब न्यूज में थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का भी होना जरूरी है। सो कैनेडियन सिंगर डैनियल कैसर जो है, उन्होंने अपने 2026 सन ऑफ स्पर्जी टूर का ऑस्ट्रेलिया लेग अनाउंस किया है। एंड यस, ब्रिस्बेन इज ऑल्सो ऑन द लिस्ट। जी हाँ, सो ऑस्ट्रेलिया टूर नवंबर में सिडनी से स्टार्ट होगा और ब्रिस्बेन भी टूर डेस्टिनेशंस में इंक्लूडेड है। तो ब्रिस्बेन के म्यूजिक लवर्स गेट रेडी। और म्यूजिक लवर्स के लिए एक और नाम है, जॉर्डन राकी। जी हाँ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूर अनाउंस किया है जिसमें कि ब्रिस्बेन भी इंक्लूडेड है। मतलब लाइव म्यूजिक फैंस के लिए आने वाले मंथ्स काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं। सो दोस्तों, आइए हम एंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक। ऐसी ही अपडेट सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

0: हाँ जी ब्रिस्वानी लिसनर्स, एक छोटा सा एक रिमाइंडर है भैया आप सभी के लिए। आज ना अपने आप पर अननेसेसरी जो प्रेशर है वो मत डालिएगा। आपको हर चीज एक ही दिन में परफेक्ट नहीं करनी है। वन स्टेप एट अ टाइम, एक काम कंप्लीट करो देन दूसरी और जरूर बढ़ो। और जब काम के बीच में थक जाओ ना, देन टेक अ ब्रीथ भाई, हैव सम वाटर एंड स्टार्ट अगेन। जी हाँ, फिर देखिए आपको काम करने का भी बहुत मजा आएगा और खुद को आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। सो चलिए फिर दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई है, अब वक्त हो चुका है आपको भाई आपकी मॉर्निंग को ब्यूटीफुल सा बनाने के लिए। जी हाँ, सो तो आइए फिर इसी के साथ एंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्बेन में। सो दोस्तों, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे स्पोर्ट्स की तरफ। वैसे दोस्तों, ब्रिस्बेन स्पोर्ट्स लवर्स के लिए तो वैसे भी फुल ऑन स्पोर्ट्स सिटी है। NRL हो, क्रिकेट हो, AFL हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, ब्रिस्बेन वालों का पैशन जो है वो अलग ही लेवल का है। और स्पोर्ट फैंस, वैसे आपके लिए एक सवाल है, मैच देखते वक्त आप जनरली काम रहते हो या फिर टीवी के सामने बैठकर कोच को इंस्ट्रक्शंस देते हो, लाइक पास कर, शूट कर, ये क्या कर रहा है? और क्या होता है, प्लेयर बेचारा टीवी के दूसरी साइड होता है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स। जी हाँ, मतलब देखिए, हर किसी का, हम भी ऐसे करते हैं, जब कोई भी मतलब अपना फेवरेट चैनल या सीरियल कुछ भी देखते हैं ना, हमारे ऐसे होता है कि शिट, काश हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर जी, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

इस म्यूजिक के बाद, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जानने का सफर विद योर होस्ट आरजे चांदनी जैन। सो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, ब्रिस्वन वासियों, और अब वो टाइम आ गया है जी जो मुझे भी मुश्किल लगता है लेकिन मुझे आपसे कहना पड़ता है, बिकॉज इट्स टाइम टू से गुड बाय। जी हाँ, आज का जो हमने सफर को स्पेंड किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। चाहे आपने हमें कार में सुना हो, घर पर सुना हो, काम करते वक्त सुना हो, उसके लिए थैंक यू फॉर चूजिंग रेडियो ब्रिस्वानी एंड ऑफकोर्स आपके अपने दोस्त को चांदनी जैन को। सो और आज जाने से पहले वैसे एक लाइन जरूर याद रखेगा, लाइफ को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को बस नोटिस करना बहुत जरूरी है। सो स्माइल अ लिटिल मोर, वरी अ लिटिल लेस, एंड अपने फेवरेट लोगों को बस आज जरूर बताना कि आई एम हैप्पी यू आर इन माय लाइफ। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे चांदनी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। टेक केयर ब्रिस्बेन, ड्राइव सेफ, स्टे हैप्पी, और हाँ कल फिर मिलेंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर इसी प्यार के साथ। सो गुड बाय, टेक केयर एंड सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी। टेक केयर, बाय बाय।

साक्षी, आप सुन रहे हैं रिजु ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीमा पर सख्ती बढ़ाने के लिए मोरक्को को वित्तीय मदद करेगा EU। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से सीटा की ओर हुआ 60,000 लोगों का पलायन। पिछले दिनों स्पेन में स्वायत्त शासित क्षेत्र सीटा में मोरक्को की तरफ से अवैध तरीके से घुसपैठ के मामले में यूरोप के कान खड़े हो गए हैं। इस मामले में मोरक्को को अपनी सीमा पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कायम करने, तार बाड़ का घनत्व और बढ़ाने समेत तमाम उपाय करने के लिए यूरोपीय संघ ने मोरक्को को वित्तीय समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय मूल के व्यक्ति समेत 25 लोगों की नागरिकता रद्द करेगा अमेरिका, आपराधिक आरोपों के चलते कार्यवाही। अमेरिका ऐसे 25 नागरिकों की नागरिकता रद्द कर रहा है जिन्होंने बाद में नागरिकता हासिल की। इनमें भारतीय मूल के एक व्यक्ति भी शामिल है। इन लोगों पर पहचान छिपाने या गलत जानकारी देने से लेकर हत्या की कोशिश और बच्चों के यौन शोषण जैसे आरोप लगे हैं। अमेरिका के न्याय विभाग ने डेलावेयर जिले के रहने वाले 65 वर्षीय नरेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अमेरिका में दाखिला पाने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया बेस्ट फ्रेंड, भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ गहरे होते रिश्तों को लेकर बात कही है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बताया है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें वेंस ने कहा था कि अमेरिका ही इसराइल का एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी है। क्रिएटिव बने और कुछ नया सोचें, ईरान पर हमले के लिए US आर्मी ने दिए सैनिकों को टिप्स। सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमला करने के लिए नए और क्रिएटिव तरीके खोजना शुरू कर दिया है। दावा है कि इसके लिए मिडल ईस्ट में तैनात इस अमेरिकी कॉम्बैट यूनिट ने मिलिट्री एनालिटिक्स के एक बड़े ग्रुप से संपर्क किया है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 50 लाख घरों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगे, 9 महीनों में 3 गुना बढ़ी रफ्तार। पीएम सूर्य घर योजना के तहत पूरे भारत में 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि योजना शुरू होने के 2 साल से कुछ ज्यादा समय में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली गई है। इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, 2019 से अब तक 274 भगौड़े लाए गए वापस, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। विदेश में कानून से बच रहे अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन के तहत भारत 2019 से जुलाई 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगौड़े अपराधियों को वापस लाया है। केंद्र सरकार ने कहा अब तक 274 भगौड़े लाए गए वापस, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। विदेश में कानून से बच रहे अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन के तहत भारत 2019 से जुलाई 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगौड़े अपराधियों को वापस लाया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये कोशिश मजबूत कानूनी

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

0: और आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ, अमिता, आप और जो लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो ये उम्र है ना, उम्र कैलेंडर पर लिखा हुआ सिर्फ एक नंबर है, यू नो दैट। इंसान तब बूढ़ा होता है जब वो कुछ नया सीखना, हंसना और सपने देखना छोड़ देता है, समझे। जब तक दिल में क्यूरियोसिटी है और सुबह उठकर कुछ करने की जज्बा है, जिंदगी अभी भी जवान है। रिमेंबर व्हाट आई सेड अबाउट सेवन थिंग्स, वी वन ऑफ देम वाज दैट व्हेन यू गेट ओवर 70, दैट वाज अबाउट नॉट फॉर यू बट पीपल दैट आर 10 ओवर 70 के लिए था। आई सपोज दिस इज रेलेवेंट टू एनीबॉडी,
1: इट डजंट मैटर व्हाटएवर एज, या
0: कि जब तक आप एक्साइटेड हो या कुछ करने को सोच रहे हो, और यू कांट वेट फॉर द मॉर्निंग टू कम एंड यू वांट टू गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, जब तक ये सब आपके साथ है तब तक आप बहुत अच्छे रहोगे, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, लंबी जिंदगी होगी आपकी, ओके। पर जब अगर आप कुछ नहीं है, उठते हैं अरे यार एक और दिन क्या करूं, आज कुछ है नहीं, ये सब सोचने लगोगे तो आपका जो लाइफ बहुत कठिन रहेगा दोस्तों, लंबी नहीं होगी बहुत, ठीक है। तो यू मस्ट हैव दैट गो इन यू और इन्वॉल्व रहे, ठीक है, और ये सब द प्रेजेंट मोमेंट में भी रहे, लोगों से बातचीत भी करे और शेयर करे, हंसे खेले। तो कुछ लोग हैं जो हंसना खेलता खेलना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, सिर्फ अगर आप देखेंगे तो, जैसे हमारी एक पॉलिटिशियन अभी बहुत चिल्ला रही है सब बगल, उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है। ये सब जब तक है आपके पास तो ये आपका दिल पर बड़ा ये बोझ पड़ेगा दोस्तों, आप याद रखिए। लाइफ को आप बहुत, वेल आई डोंट नो, आई डोंट टेक लाइफ वेरी सीरियसली ऑनेस्टली। कभी लोग कहते अरे जतीश थोड़ा तो सीरियस बनो, अरे क्यों सीरियस बनो भाई, क्या है दुनिया में सीरियस बनने के लिए, वी जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, आई डोंट ओन एनीथिंग हियर। जब तक है हंस लो खेल लो, है कि नहीं, आगे कहाँ है मंजिल, क्या होगा कौन जानता,
1: who knows, yeah.
0: who knows? Exactly. So while you are here, be happy, make others happy, खुश रहो, लोगों को खुश रखो, hey, that is what life is all about. It's just a stepping stone. Nothing belongs to you here. Okay? No matter what you do, chahe kitna bhi mahal bana lo, jo kuch bhi kar lo, jaane ka waqt kuch nahi hoga. Sab chhod ke chale jayenge. Lekin haan, log unko yaad karenge jo kuch kiya ho. Jaise ki Fred Hollows hai, dekho, kitna kaam ki. You know, Fred Hollows went bankrupt, you know that?
1: Is it?
0: Doing his...
1: Wow.
0: Yeah.
1: Really?
0: Looking after people
1: with eye surgery. Oh, I don't know. Yeah, I know. The surgery, yes.
0: Yeah. ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ दुनिया पर छोड़कर चले जाते हैं, यू नो दैट,
1: या लीव अ लेगेसी ऑफ,
0: नोबडी केयर इफ यू आर रिच एंड यू गो, नोबडी बॉदर्स, बट इफ यू नोटिस समथिंग, इट्स ऑलवेज आइदर सम पोएट और पीपल, दे आर नॉट रिच,
1: दैट विल,
0: बट दे हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू मैनकाइंड,
1: यस,
0: दे आर द वंस दैट आर रिमेंबर्ड,
1: डेफिनेटली।
0: इलन मस्क गोज, हु विल वरी,
1: yeah,
0: after a while finish, right?
1: yeah
0: but agar wahi jagah par koi jo kuch acha kaam kiya ho samaj ke liye ya for the health of people, they will be remembered.
1: Yeah true.
0: So ye sab baatein hain dosto, life mein ye sab aap rakhe aur you know ego aur ye sab cheez jo usko thoda kabu mein rakhe, theek hai,
1: yep,
0: yeah, don't have to show off, don't have to show things to other people. What you, some people like showing what they have achieved and I won't say.
1: No.
0: They post everything.
1: Everything, yeah. yeah.
0: मैं क्यों हंस रहा, आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन हाँ, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत और nice song.

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सत श्री अकाल, मदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां थोड़ा अपना हरभजन। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
4: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
5: सैटरडे 15th अगस्त 6:30 PM
3: मिलती है जी ब्रिस्बेन विच
5: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।
6: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
7: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
8: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
9: और हम वापस आ गए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन, आपकी अपनी पहचान। नंबर है 04300031701। अगर आप भी कुछ सुनना चाहे आप भेज सकते हैं हमारे पास।

0: Did you like that?
1: I did.
2: Okay.
1: A bit short, but I like it.
2: Yeah.
1: I
2: देखिए रेडियो like के रेडियो ऐसा चीज है जब हम कुछ बोलते हैं तो ये बड़ा वन टू वन होता है. कुछ लोग इसको ऑफेंसिव मान लेते हैं जबकि हम किसी पर भी वो नहीं किया हूं.
1: हाँ.
2: तो जनरल बात है कि हाँ कुछ लोग हैं जो पोस्ट करते हैं बट दे पोस्ट आर वेरी वेरी नाइस. दे शो प्लेसेस मैं भी करता हूँ. दे शो प्लेसेस इन थिंग्स लाइक दैट. इट्स नॉट अबाउट देम सेल्फ दैट मच. इट इज अबाउट हैविंग गुड फन एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट इफ यू नो गाइस नो व्हाट आई मीन. It's not a self-promotional kind of post, you know. अच्छा लगता है जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं कुछ फोटो उतार कर भेजा. That is a good post. I like that. Don't you agree with
1: me? Yes, totally.
2: Yeah. But, you know, but I don't, some people post all the time. Some people post all the time but with some very good things.
1: Yep.
2: Which is nice, you know. But then, I hope people know what I mean.

0: ओके रेडियो बिजवानी सुन रहे दोस्तों, 8:13 हो गए हैं और ओके ऑलराइटी ओके ओके लॉट ऑफ टेक्स्ट आर कमिंग
1: इज इट
0: Stop it, Vinny. Stop it. You think that was effective the way I said it?
1: Huh?
0: No, she's okay. All right. जब लोग वादा करके आते नहीं ना या आते नहीं तो ये गाना गाते हैं.

0: Okay. All right. These are things All right.
1: No, it's just that. See, it's fine now.
0: But it should not. It should not go anywhere.
1: It does happen.
0: But it should not.
1: No, well, it... No. Okay.
0: Okay. करीब आ गए हैं दोस्तों हम बस 32 मिनट हो गए हैं 8:00 और क्या अच्छा एक गाना है आई डोंट नो इफ आई शुड प्ले दिस वन
1: वेल आर यू प्लेइंग इट और यू नॉट प्लेइंग इट
0: आई एम प्लेइंग इट
1: ओह

ओके और इस समय दोस्तों अब थोड़ा एक दो पुराना गीत भी हो जाए, क्या सोचते हैं आप? तो चलिए ऐसे में एक बहुत ही प्यारा गीत है दोस्तों, और शायद आपको भी अच्छा

गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो माशा अल्लाह अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम अजी क्या कहने सुभान अल्लाह गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो माशा अल्लाह अस्सलाम अस्सलाम अलैकुम अजी क्या कहने सुभान

बातें न बना, वो बातें न बना, आंखें न चुरा, सदके जाऊं मैं बल्ला। कुत्ते में तुम और भी अच्छी लगती हो माशा अल्लाह। अस्सलाम अलैकुम अजी, क्या कहने सुभान अल्लाह।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: बिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्यों चाहे।

0: आज मौसम बड़ा बेईमान है और आज मौसम तो बड़ा ठीक है दोस्तों। ऐसे तो कहा गया है कि आज मौसम बहुत ठीक रहेगा और अभी एकदम विंटर से गुजर रहे हैं हम, राइट इन द मिडल ऑफ विंटर एंड वी अबाउट टू मूव फ्रॉम द विंटर।
1: वी गोना रन अवे आउट ऑफ हियर एज़ वेल। ओके, सो थिंक दिस मे बी द लास्ट सॉन्ग।
0: यप,
1: इज इट? वी विल से या। It's a long song. It's a long
0: okay,
1: song.
0: Okay, okay, okay.
1: We'll say our namastes and see you all tomorrow. Have a happy day.
0: Yeah, be happy, huh? Be happy.
1: Toodaloo.

गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? जिंदगी मस्त, जबरदस्त। और सताक्षी की तो ये हमेशा दुआ है कि आप बहुत खुश रहें, बहुत जबरदस्त रहें और जिंदगी की ये जो उड़ान है ना, इसके साथ साथ उड़ते रहें। देखिए, अगर नहीं उड़ेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, इसलिए सिचुएशन चाहे जो भी हो, जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर तो चलना है। तो चलिए, आज कुछ रिश्तों की बातें बहुत खास हैं, और वो रिश्ते जो आपको पूरा करते हैं या ये कहूँ जबरदस्त रहें और जिंदगी की ये जो उड़ान है ना, इसके साथ साथ उड़ते रहें। देखिए, अगर नहीं उड़ेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, इसलिए सिचुएशन चाहे जो भी हो, जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर तो चलना है। तो चलिए, आज कुछ रिश्तों की बातें बहुत खास हैं, और वो रिश्ते जो आपको पूरा करते हैं या ये कहूँ कि जिनके साथ आप पूरा फील करते हैं,

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ। आपका अपना मॉर्निंग शो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने। सो चलिए, इसके पहले कि आपकी और अपनी बातों का सिलसिला शुरू किया जाए, विश करते हैं उन्हें जिनके लिए ये पल खास हैं। सो जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिंदगी के साथ, जिंदगी के कदमों के साथ आगे बढ़ते रहें आप और हमेशा मुस्कुराते रहें। आपकी जिंदगी में वो सारे पल आएं जिनके साथ आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। विश करूंगी उन्हें भी जिनके लिए ये पल आज बहुत खास है, क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। देखिए, जीवन साथी ना सिर्फ जीवन साथी इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है, बल्कि इसलिए कहलाता है क्योंकि आपके हर सुख दुख, हर परेशानी में, हर एक बात में जिंदगी की वो आपके साथ खड़ा हुआ है, डट के खड़ा हुआ है। और जीवन साथी का मतलब यही है कि यार जो मरते दम तक आपका

नहीं छोड़ेगा, है ना। तो बस आपका जीवन साथी आपके साथ है, आपको जिंदगी में और क्या चाहिए, किस बात की शिकायत है। जिनके लिए ये पल स्पेशल और खास है, आज का वक्त स्पेशल और खास है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आपके नाम प्ले करते हैं अभी अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

वेलकम बैक इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। एक बार फिर से सुबह सताक्षी करती है आपका वेलकम। यार सुकून की तलाश सबको है, लेकिन ये सुकून जो है ये कमबख्त मिलता नहीं है। ठीक है, जब तक सुकून की तलाश जारी रखेंगे ना, मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये चीज रियलाइज की है कि तब तक आपको सुकून मिलेगा भी नहीं। यू नो, जब आप इस सुकून को इसके सहारे छोड़ देते हैं तभी आपकी जिंदगी में आता है, जब बिना बात के आप सवाल नहीं करते किसी के साथ में, या बिना बात के आप किसी के पास जाके ये नहीं पूछते भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। आप छोड़ देते हैं चीजों को, जब आप लेट गो करना सीख जाते हैं, जब आप चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं, जब आप लोगों को छोड़ना सीख जाते हैं, उस पल आप जिंदगी में सुकून फील करते हैं। यार ये वो पल होता है ना जब आपके फ्रेंड्स कम हो जाते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार दोस्ती कम हो जाएगी तो सुकून मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि आपको किनके साथ एक्चुअली रहना है, कौन है ऐसा जो वाकई आपका कहने को अपना नहीं है, अपना है। और जिस दिन आप ये सीखते हैं ना, आपकी जिंदगी से आधे फ्रेंड्स आधे रिश्तेदार कम हो जाते हैं, उस वक्त आपकी जिंदगी में सुकून आता है। तो अभी अगर आप सुकून की तलाश में हैं तो आप सही जगह पहुंचे नहीं है। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब ना कोई तमन्ना नहीं रहती है, कोई ख्वाहिश नहीं रहती है, अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, ऐसे वाले फेज में हम आ जाते हैं। चीजों के लिए शिकायत करना हम बंद कर देते हैं, कुछ पाने की ख्वाहिश बंद कर देते हैं, इनफैक्ट भगवान के पास भी जाकर मांगना बंद कर देते हैं, नहीं रहती किसी चीज की ख्वाहिश। फिर सडनली एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आता है जिसके साथ आपको वक्त गुजारना अच्छा लगता है, जिसके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, जिसके साथ आप वक्त गुजारते हैं, जिसके साथ आपको अच्छा फील होना शुरू होता है। पहले वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगता था, मतलब दोस्ती है, बात करना पसंद है, लेकिन उस लेवल से नहीं सोचते, और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि भाई साहब यही वो बंदा है जिससे हमें मोहब्बत है। फिर लाइफ की वो ख्वाहिशें वापस आने लगती हैं, वो प्रेयर्स में उसे मांगना वापस आने लगता है, आपकी जिंदगी का एक मकसद होने लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है यार, है ना, सुबह का वक्त है, देखिए झूठ मत बोलिएगा। तो खासकर आपके नाम है ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए ठैपन्स आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
3: वेलकम बैक. रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस. आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर. जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी. और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं बॉलीवुड के. वो गाने हैं हमारे, वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन, हमारे साथ सुनते रहिए गानों के हैट्रिक. ये पहला ट्रैक है आपके लिए.

तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इस ट्रैक के इस पार एक बार फिर से सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। देखा जाए तो हम अपनी लाइफ की हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। हम ना लोगों को छोड़ना चाहते हैं और ना चीजों को छोड़ना चाहते हैं। हम हर एक चीज को होल्ड करना चाहते हैं, हर एक चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं, फिर चाहे वो हमारी अलमीरा में रखे कपड़े हों या कोई इंसान हो। हम नहीं चाहते कि वो बंदा जो है वो हमारी लाइफ से दूर जाए, हमसे दूर जाए। और इसका नतीजा ये होता है कि हम जिद्दी हो जाते हैं चीजों को पाने के लिए, लोगों को पाने के लिए, एक पर्टिकुलर इंसान को पाने के लिए हम जिद्दी हो जाते हैं। बट यू नो, लाइफ आपके जिद से नहीं चलती है। जितना ज्यादा आप चीजों को होल्ड करना शुरू करते हैं, जितना ज्यादा आप चीजों को पकड़ना शुरू करते हैं, चीजें आपके हाथ से उतनी ही फिसलती हैं। फिर चाहे आपके अलमीरा के कपड़े हों जो पड़े रहेंगे, आप नए कपड़े और ला नहीं पाएंगे क्योंकि अलमीरा ऑलरेडी भरी रहेगी। आपका थॉट प्रोसेस हो, इकट्ठा करते जाएंगे, आपका दिमाग भरता जाएगा, स्ट्रेस होने लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, या फिर कोई बंदा हो जब आप उसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे वो आपके साथ अपने रिश्ते में घुटन फील करने लगता है। सो इसलिए चीजों को छोड़ना सीखिए, उन्हें खुले आसमान में छोड़ना सीखिए। जो कपड़े अब आपके यूज के नहीं, उन्हें निकाल कर किसी जरूरतमंद को देना सीखिए। जो चीजें आपके काम की नहीं है उन्हें अपने पास से हटाना सीखिए, ताकि नई चीजों के लिए, नई मेमोरीज के लिए, नई यादों के लिए जगह बन सके। और एक इंसान के साथ अगर आप हैं तो आप उसे होल्ड करना बंद कीजिए, ताकि वो आपके साथ सेफ फील कर सके। सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम।

सो वेलकम बैक इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सदाक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर. यू नो इमोशंस एक रिश्ते में बहुत मायने रखते हैं. और जब मैं देखती हूँ एक रिलेशनशिप को तो मैं देखती हूँ कि यार दो लोगों के बीच में ना फाइट सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो लड़कियां हैं जो फीमेल्स हैं वो अक्सर ये चाहती हैं कि सामने वाला बंदा जो है, यानी कि ऑफकोर्स यार मेल उनका पार्टनर जो है, वो उनके इमोशंस को बिना कहे समझ ले, है ना, वो समझ जाएगी उन्हें क्या चाहिए. जबकि लड़के या मेल्स इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं. वो ये चाहते हैं कि यार तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे आके कहो, मुझसे कह दो और तुम्हें वो चीज मिल जाएगी, बट कहो. देखिए जनरली हम मान के चलते हैं कि जो मेल्स हैं उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है जिसमें इमोशंस को बहुत कम तवज्जो दी जाती है और उनके जो प्रैक्टिकल पार्ट है उनकी लाइफ का उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और इसलिए वो लाइफ में प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं. इमोशंस होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, कुछ लड़के बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बट ये चीज है कि यार वो ऑन द अदर हैंड वो प्रैक्टिकल भी बहुत होगा बंदा, तो इसलिए आपको कहना ही पड़ता है. तो मेरा ये मानना है कि यार धीरे धीरे ना हमें ही लड़कियों को ही अपने आप को थोड़ा बदल लेना चाहिए और कहना सीखिए, वरना इसी तरह से झगड़े होते रहेंगे और प्रॉब्लम्स होती रहेंगी. और मेल्स यार थोड़ा सा अगर आप भी, मुझे लगता है कि इमोशंस को समझना शुरू करेंगे, बहुत खूबसूरत पार्ट है यार इमोशन भी, है ना, तो भी बात बनेगी रिश्ते में. आइए फिलहाल आप चेक कीजिए कि आपकी लड़ाई इसी बात पर होती है कि नहीं. मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन्स शर्ट्स एंड